और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरा है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें कयामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोजख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं रोशन सुबुह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेहरापुर, सकरंड, मातली ऐं मटियारी स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो। ऐं साईं मुंहिंजा अॼु तव्हां लाइ हिकिड़ी चूंड कई आहे, चंद सिटरूं आहिनि शायरीअ जूं, जंहिं मां हिकिड़ो मक़सदु निकिरे थो, जंहिं मां हिकिड़ी माना निकिरे थी, जंहिंखे असां ॾिठ बि चऊं, सवाल बि चऊं, गुजरत बि चऊं। अॼु तव्हांखे तमामु आसान पंहिंजो हिकिड़ो सवालु आहे, जेको मां अॻु में प्रोग्राम में पढ़ी बि चुको आहियां ऐं सवाल ॾेई बि चुको आहियां राति वारे जॾहिं जंहिं टाइम में राति जो प्रोग्राम कंदो हुउसि, त असांजो हिकिड़ो गुझ यानि गुजारत असांजो जेको सवालु आहे ॾिठ मां ऐं शायरी जे चंद ऐं तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था मोबाइल जे SMS ज़रिए। ऐं SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो। जेके दोस्त नवां प्रोग्राम ॿुधनि पिया या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे आन कयो आहे, त हुनखे असां सवालु हिकु दफ़ो ॿीहर वरिजाईंदासीं, पर सवाल जो जवाबु जेके तव्हां मोकिलियो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो ऐं पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं गुजरात जो सही जवाबु लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड कंदव। जेके दोस्तनि खे रेडियो ॿुधण जी सहूलियत घटि आहे, फेसबुक ते मोबाइल में प्रोग्राम ॿुधनि पिया, त तव्हां असांजे सवाल जो सही जवाबु GFM88 जे ID ते तव्हां असां ॾे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था। ऐं असांजो मोबाइल नंबर आहे स्टूडियो जी जेका मोबाइल आहे, असांजो कॉल नंबर आहे, उहो आहे 0332-1322-88 ते बि तव्हां कॉल करे असांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजी 10 बजे खां मोबाइल आन थींदी ऐं तव्हां असांजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। सवाल हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे ॿीहर ॿुधायां थो, त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु, हणु हणु कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद, हाणे कसम खणी कंधु नेहारनि निमाणनि नेणनि सां। साईं मुंहिंजा, इंसान जी सिहत ऐं ख़ूबसूरती लाइ भरपूर निंड तमामु ज़रूरी आहे। निंड जो ख़ूबसूरती सां गहिरो तालुक़ु आहे ऐं निंड खां सवाइ तव्हां ख़ूबसूरती जी उमेदु बि कोन था रखी सघो। आमतौर ते हर माण्हू रोज़ानो राति जो 7 खां 8 कलाक आराम करे थो, अक्सर केतिरा माण्हू आराम बि घटि कंदा आहिनि। ऐं आराम करण दौरान माण्हू जो जेको जिस्म आहे उन में हार्मोन्स पैदा थींदा आहिनि, जंहिंसां इंसान खे तवानाई हासिलु थींदी आहे। जीअं ईअं खणी चऊं त अॼोके दौर में जीअं मोबाइल जी बैटरी चार्ज थी वञे ऐं उनजे करे माण्हू 3 खां 4 कलाक वधीक उन बाद कमु करे सघे थो। निंड दौरान फितरी अमल ज़रिए इंसानी जिस्म जा सेल्स जेके आहिनि उहे ताज़ा थी वेंदा आहिनि ऐं निंड सां दिमाग़ खे सुकून मिलंदो आहे, जेको जिस्म जे मुख़्तलिफ़ मुतालबनि खे पूरी करण में मदद ॾींदो आहे ऐं सोच वीचार करण में आसानी थींदी आहे। तव्हां जी जेका चमड़ी आहे, स्किन आहे, उनखे जिन शयुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, सॼो ॾींहुं कमु करण सां तव्हांजी चमड़ी जा जेके टिश्यूज़ आहिनि सुकणु लॻंदा आहिनि ऐं अव्हां जूं अखियूं कुझु न कुझु ॾिसंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं मुस्कराइण या ॻाल्हाइण में बि हरकत हूंदी आहे। सुम्हण दौरान जिस्म जूं सभु हरकतूं रुकिजी वेंदियूं आहिनि। अहिड़ी तरह माण्हूअ खे आराम मिलंदो आहे त इंसान जी जेका आहे निंड पूरी थी वेंदी आहे ऐं इंसान जो चहिरो ख़ूबसूरत थी वेंदो आहे।

जी साईं मुंहिंजा हिन हफ़्ते तव्हांजे लाइ असां जेको सुवाल ॻोल्हियो आहे शायरीअ जे चंद सिटनि मां असां जेका गुजरात ॻोल्ही आहे उहा ॾिठ आहे ॾिठ मां हिकिड़ो सुवाल निकिरे थो हिकिड़ी गुजरात निकिरे थी उन्हनि लफ़्ज़नि मां तव्हां जेको आहे सो जवाबु कढी सघो था त असांजो जेको सुवाल आहे सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद हाणे कासम खणी कंधु निहारनि निमाणनि निणनि सां त इन मां असांजो जेको सुवाल आहे गुजारत आहे निकिरी सघे थी ऐं उन लाइ तव्हां असां ॾे जवाबु सही मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में SMS ज़रिए तव्हां LRK लिखी पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था ऐं तव्हां असां ॾे फेसबुक जी ID ते बि GFM88 जी ID ते तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था फेसबुक ते ऐं तव्हां असां ॾे 10 बजे खां बाद में कॉल करे लाइव कॉल करे तव्हां असां ॾे तव्हां नालो पंहिंजो लिखाए सघो था सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा वरी बि असां ॻाल्हि कंदासीं त सिहत मंद रहण जो ज़िंदगी लाइ ज़रूरी आहे ऐं सिहत असां पंहिंजी पाण सही करे सघूं था उन में ईअं हूंदो आहे त गैर मयारी शयूं घटि इस्तेमालु कयूं वक़्तु सिर पंहिंजो खाधो वापरायूं ॾींहं में 10 खां 12 गिलास पाणी पीऊं ऐं पाणी जिस्म में मौजूदु चर्बीअ खे ख़तमु करण में मदद करे थो ऐं खाधे जी ख़्वाहिश खे पिणु घटाए थो घणे मक़दार में पाणी पीअण सां जिस्म में मौजूदु ज़खीरो जेको फिल्ड आहे उहो नेकाल थी वञे थो ऐं पुराणे दौर जा माण्हू तंदुरुस्तु रहंदा हुया छाकाणि त उहे हिकु

शहर खां ॿिए शहर ताईं मुसाफ़िरी कंदा, यानि पंधु जेको आहे उहो प्यादल कंदा हुया। जॾहिं तव्हां तकिड़ो पंधु करियो था, तव्हांजी पंहिंजी पाण में तव्हां महसूसु कंदव त तव्हां में हल्काई ऐं तकिड़ाई महसूसु थींदी। तव्हांजे साहु खणण जो अमल तकिड़ो ऐं गहिरो थींदो। सुठी सिहत लाइ मुख़्तलिफ़ खाधा चूंड ज़रूरी आहे, ऐं खाधनि खाइण सां ई मुख़्तलिफ़ सब्ज़ियुनि सां तव्हांखे ज़रूरु फ़ाइदो पवंदो, छो त इएं ई आहे त पंहिंजी सिहत सही रखण लाइ ज़िंदगी लाइ तमामु ज़रूरी आहे।

0: It's 10 a.m.
1: This time check is gone.
2: Network पर KTN News.

वर्ल्ड कप जे फाइनल में बुड़ी जे मुकाबले तां एक गोल तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणजी वियो। स्पेन जे रांदीकर फेरन टोर्स शानदार गोल करे टीम के 16 सालन बाद बियो भेरो चैंपियन बणाए छॾियो। मैच जो फैसलाती गोल इस बे हाफ में थियो। अर्जेंटीना जे

0: अर्जेंटीना जो कप्तान मेसी लुड़कलाड़े वेठो। शौकीन सा कराची के स्टेडियम में वही स्क्रीन ते मैच दिठी। कराची के 15 वड़ी स्क्रीन ते फुटबॉल जो मैच दिखारे वो। शहर के वे अंग में स्क्रीन ते फुटबॉल मैच दिठी। उडेरो लाल स्टेशन वेझो कराची का पंजाब वेंदड़ माल गाड़ी जो बोगियो पटड़ी तां लही वयूं। अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक 24 कलाक लाए बंद। कराकरम तेजगाम पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बेन ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन से रोको वो। वहाब शाह रेलवे स्टेशन वट माल गाड़ी जो केतरी बोगियो पटड़ी तां लहण सबब ट्रेन की अच वन मुतासर थी वही। डीएस रेलवे कराची चवण है हादसे सबब अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक मुकमल तौर मुअतल है। रेलवे ट्रैफिक 24 कलाक मुअतल रहने जो इम्कान। ट्रेन की अच वन 24 कलाक मुअतल रही। कराकरम एक्सप्रेस के हैदराबाद अलामा इकबाल एक्सप्रेस के कोटड़ी स्टेशन से रोको वो है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Chopper at Mart. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Ashik Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
4: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड

में केतरियूं अहिड़ियूं अमड़ियूं माइरूं मौजूदु आहिनि जेके वधीक औलाद हुजण बावजूद बग़ैर कंहिं पंहिंजो कमु कंदड़ मुलाज़िम रखण जे पोइ बि पंहिंजो जेको घर जो कमु आहे अकेले सिर कंदियूं आहिनि। जेको बि हुन में माल ढगे जो कमु हुजे, रद बचा जो कमु हुजे, ऐं थांव सिफ़ा हुजनि या लटो कपिड़ो धोइण में, कोई बि हुन में आर न कंदियूं आहिनि, पंहिंजी सॼी महिनत पाण कंदियूं आहिनि। का बि घर में अहिड़ी मासी कमु कार वारी न आहिनि रखंदियूं। ऐं कुझु औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको सॼो ॾींहुं फारिग हूंदियूं आहिनि ऐं मोबाइल इंटरनेट ते कमु कार वेहंदे पोइ बि चवंदियूं आहिनि पंहिंजो थक आहे, मथे में सूरु आहे ऐं कमु करण जहिड़ियूं न आहियूं। बहरहाल कुझु औरतूं सिलाई में मसरूफ़ हूंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾींदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी हमेशह घर जे कमकार सां वधीक महिनत कंदियूं आहिनि। महिनत ज़रूरी आहे ऐं जेतिरे बि इंसान महिनत कंदो, महिनत में अज़मत आहे ऐं कोशिशि करे माण्हू जेको पंहिंजो हथ जो पुरियो आहे, हथ जी महिनत आहे, उहो वधीक आहे। हुन में आराम बि अचे थो, सुकून बि अचे थो ऐं इंसान जी दिलि जेका आहे उहा मुतमिन हूंदी आहे।

जी साईं मुंहिंजा दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसाला थियनि था उन्हनि खे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो ऐं डिप्रेशन जा जेके मुख़्तलिफ़ सबबु थियनि था जिन में को घरू सदमो ॾुख मुआशी मसाला या बेरोज़गारी बि उहे चंद सबबु हूंदा आहिनि डिप्रेशन जा जंहिंजे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन्हनि मंझां को बि सबबु उन ते लागू नथो थिए त पोइ उनजो असुलु सबबु ॻोल्हणु ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकिड़ो वाज़ियो सबबु इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेके शयूं लागू आहिनि उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मिसाल घटि निंड करणु ऐं निंड घटि करण सां डिप्रेशन में बि वाध जो ख़तरो थींदो आहे ऐं काफ़ी जेको नशो इस्तेमालु करण सां जंहिंमें सिगरेट छिकणु ऐं घणेई अरसे खां उहा ॻाल्हि कई वञे थी त सिगरेट छिकण जे करे बि माण्हू डिप्रेशन जो शिकार थिए थो ऐं इंटरनेट ते घणो वेहणु जदीद दौर में नौजवान इंटरनेट ते फेसबुक ते ऐं मोबाइल जो घणो इस्तेमालु करण सां बि जेके चीटिंग कनि था मोबाइल ते उन सां बि पंहिंजी सॼी राति सॼो ॾींहुं ऐं काफ़ी मोबाइल ते जेके गेमियूं अची वियूं आहिनि ख़ासि करे नौजवान नंढड़ा ॿार इहे जेके आहिनि पोइ बाद में इहे डिप्रेशन जा मरीज़ थी वेंदा। त असांजी गुज़ारिश इहा आहे त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे नौजवाननि खे एहतियात करायो ऐं कोशिशि करे पंहिंजो टाइम सां आराम कनि पंहिंजी महिनत कनि ऐं नशे जा आदि न थियनि ऐं घणो मोबाइल जा आदि न थियनि त इन मसइले खां बची सघनि था।

0: सचल की सर मस्त धरती।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836
9: मोहम्मद उमर गोरी 0315-1524
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

सुबुह प्रोग्राम मां ॿुध पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। ऐं साईं जा असां तव्हांखे जेको सवाल नओं से जेका गुजरात ॾिनी से ॾिठ वारी, उन में शायरी जूं चंद सिटूं, उन मां उन जो मक़सदु उन जो जवाबु निकिरे थो त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पेरें पंधु, हण हण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद, हाणे कासम खणी कंधु निहारनि निमाणनि निणनि सां। त साईं मुंहिंजा गुजरात जंहिं बि दोस्त सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे, हिन कलाम खां पोइ जा नाला बि खणंदासीं, ऐं जिन गुजरात जो सही जवाबु ॾिनो आहे त असां हुनखे थोरो सिधो बि कंदासीं। त इन शायरी में कहिड़ो मक़सदु निकिरे थो, कहिड़ी माना निकिरे थी, कहिड़ो सही जवाबु निकिरे थो, अव्हांखे उहो असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ऐं अव्हांखे ज़रूरु इन जवाब जो इंतज़ारु हूंदो।

त साईं जा असां नाएं बजे खां वठी हिन महिल ताईं असां तव्हां सां जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते ॻाल्हि कई आहे सिहत जे हवाले सां सिहत में ज़िंदगी जे हवाले सां ज़िंदगी में महिनत जे हवाले सां वक़्त जे हवाले सां ऐं काफ़ी मसइलनि यानी बीमारियुनि जे हवाले सां असां सां ॻाल्हि कई आहे पर जेके असांजा काफ़ी दोस्त हूंदा आहिनि उहे सेल्फ़ मेडिकेशन कंदा आहिनि यानी उहा कंहिं बि तकलीफ़ में कंहिं बि डॉक्टर सां मुलाक़ात न कंदा आहिनि ईअं ई पंहिंजो पाण कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां दवा वठी इस्तेमालु कंदा आहिनि इनखे सेल्फ़ मेडिकेशन चइबो आहे ऐं इन हिसाब सां ज़रई माहिर पंहिंजी जेके ज़रात वारा असांजा दोस्त आहिनि हारी हिन जेके कुड़मी हिन जेके फसल बाग बाग़ीचा ऐं सब्ज़ी वग़ैरह कनि था त उनमें जेके जीत ॼणा हूंदा आहिनि उनमें जेको यूरिया इस्तेमालु थींदो आहे उहो या दवाऊं जेके इस्तेमालु थींदियूं आहिनि त उहे पंहिंजो पाण वठी कंहिं डीलर तां कंहिं दुकान तां इस्तेमालु कंदा आहिनि पर कंहिं ज़रई माहिर सां कोई भी राबतो न आहिनि कंदा उनमें उनखे उहो तमामु घणो नुक़सानु थींदो आहे पर जेकॾहिं हुनजी थोरी फीस हूंदी कंहिं बि ज़रई माहिर जी त असांखे उहो वॾो फ़ाइदो पहुचंदो उहो सॼो असांखे तरीक़ेकार ॿुधाईंदो असांखे उन मेडिसन जो नालो ॿुधाईंदो असांखे उन दवा स्प्रे जो नालो ॿुधाईंदो त असां इस्तेमालु कंदासीं त असांखे घणो फ़ाइदो पवंदो ऐं जेके मालवंत माण्हू आहिनि जिन वटि माल आहे ढोर ढगा आहिनि ऐं पखी धारनि था उनमें बि असांजी मेडिसन इस्तेमालु थींदी आहे पर उहा बि असां कंहिं न कंहिं स्टोर तां वञी करे जेके बि असांजा जानवरनि जा स्टोर आहिनि दवाऊं उते पयूं आहिनि त असां उन डॉक्टर सां न मुलाक़ात न कंदासीं उनखे न ॾिसींदासीं त असांजे हिन पखीअ खे कहिड़ी तकलीफ़ आहे असांजे हिन जानवर खे कहिड़ी तकलीफ़ आहे त असां ईअं बसि पाण दवाऊं वठी अचे माल खे खाराईंदासीं पर माल हेॾो महांगो माल आहे लखनि जे रक़म में हिन वक़्तु माल विकिरो थिए थो पर असांजो उहो बीमार थी थो वञे या असां उनखे ज़बह करे छॾींदा आहियूं या असां उहो माल मरी वेंदो आहे नुक़सानु पवंदो आहे पर महिरबानी करे सेल्फ़ मेडिकेशन न कयो पंहिंजो पाण कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां दवा न वठो जेकॾहिं असांखे थोरो बि बुखार निकिरंदो खंघि थींदी निमोनिया थींदी बहरहाल मथे में सूरु पवंदो पेट में सूरु पवंदो असां वञी स्टोर जो पासो वठंदासीं अबा हीअ तकलीफ़ आहे असांखे हीअ दवा ॾे ख़ुदा रा ईअं न कयो कोशिशि कयो पंहिंजे वेझे कंहिं सुठे डॉक्टर सां राब्तो कयो पंहिंजे वेझे कंहिं सरकारी या नीम सरकारी कंहिं हॉस्पिटल में वञो तमामु बहितरीन सुठा डॉक्टर वेठा आहिनि उनखे पंहिंजी तबियत ॾेखारे तव्हां मेडिसन वठो पंहिंजो पाण जी सिहत खे तव्हां सिहत बि कयो कोशिशि कयो त जेका पाण सेल्फ़ मेडिकेशन कयूं था मेडिकल स्टोर दवा वठंदा इन खां पाण खे बचायो त पंहिंजी सिहत पंहिंजा फ़सुल पंहिंजो मालमता पंहिंजो जेको आहे सो फ़सुल बहितरु रहंदा।

जी साईं मुंहिंजा जो आहे त हुनखे सिधो ईअं कंदासीं सुबुह साण सजणनि जो सही जवाबु आहे रोंबो बरोंबो थींदो बि रोंबो थींदो आहे उन में पोएं पेर वञिबो आहे पर हिन वक़्तु असांजे सिंध जे जेके इलाइक़ा आहिनि जेके ज़िला आहिनि ख़ासि करे कश्मीर ज़िलो जे कबा ज़िलो शिकारपुर ज़िलो ऐं लाड़काणो ज़िलो कंबर शिदादकोट ज़िलो ऐं दादू ज़िलो बाक़ी कुझु ज़िलनि में फ़सुलु लही चुको आहे जीअं असां ईअं खणी चऊं त सांगड़ आहे पंहिंजो बदीन आहे ठटो आहे त उते सारनि जो फ़सुलु लही चुको आहे पर असांजे इलाइक़े में जेको सारनि जो रोंबो शुरू आहे फ़सुल जी पोखाई थिए पई त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु माना जेके असांजा हारी आहिनि जेके मज़दूर आहिनि उहे पोएं पहिरें पंधु कंदा आहिनि सुबुह जो सवेर इहे असांजा सजण आहिनि मारूअड़ आहिनि सांगीड़ आहिनि इहे सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु ऐं पंहिंजो रोंबो बि कंदा आहिनि रोंबो मरायो करे हणंदा वेंदा आहिनि त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु इहे पोएं पहिरें वेंदा आहिनि पंधु कंदा हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद रोंबो बि कंदा आहिनि ऐं अलाह अलाह बि कंदा आहिनि त जेको आहे सो टाइम पूरो थिए त असां ॿाहिरि निकिरूं छो त पाणी बि हूंदो आहे पर मथां सिज जी तपश बि हूंदी आहे गर्मी बि हूंदी आहे त उन में ईअं आहे त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद ऐं हथनि सां रोंबो बि कनि पिया अलाह अलाह बि कनि पिया हाणे कासम खणी कंधु निहारनि निमाणनि निणनि सां मथे ॾिसनि पिया सिज ॾे त अलाह करे टाइम थिए त जेका असांजो सिजु पुठीअ ते पए पियो मथे ते सिजु पए पियो त महल सां घरु वञूं अलाह खे बि यादि कनि पिया रोंबो बि कनि पिया हथनि सां हण बि कनि पिया ऐं पोएं पेरे वञनि पिया त इन जो सही जवाबु आहे रोंबो या रोंबी कहिड़े बि सब्ज़ीअ जी कहिड़े बि क़िस्म जी रोंबी थिए थी या कहिड़े क़िस्म जो रोंबो थिए थो उहो पोएं पेर वञिबो आहे त असुलु जेको सही जवाबु आहे उहो आहे रोंबो त इन जो जेको सुवालु हुयो सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद त साईं मुंहिंजा असांजो जिन बि दोस्तनि सही जवाबु ॾिना काफ़ी फेसबुक ते बि असांजे दोस्तनि पंहिंजो नाला मोकिलिया आहिनि पर कंहिं बि कोशिशि न कई आहे कंहिं बि उको धोको न हयो आहे ऐं जेके असांजे इनबॉक्स में जवाबु आया आहिनि उन्हनि दोस्तनि बि कंहिं बि कोशिशि न कई कंहिं बि उको धोको न हयो पर बिल्कुलु नाला तमामु घणा आया फ़ोन कॉल ते बि नाला तमामु घणा आया कंहिं बि सही जवाबु ॾिनो जिन दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे उन में असांजो हाजी सोरा मंगरियो ॻोठु सची ॾिनो मंगरियो लॻे बकापुर खां लाड़काणो ज़िलो तमामु बहितरीन दोस्त जवाबु ॾिनो ऐं पहिरें नंबर ते असां उनखे आणियूं पिया ऐं उन खां बाद में ॿिए नंबर ते असांजो गुलाब खान कुंभर ॻोठु कंगन खां उहो बि लाड़काणो ज़िलो उन बि सही जवाबु ॾिनो आहे ऐं फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां उन बि तमामु बहितरीन तरीक़े सां जवाबु ॾिनो आहे तमामु सुहिणे अंदाज़ सां सॼो तरीक़ो असां ऐं इन्हनि टिन्ही दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे सही तरीक़े सां हुन तशरीह कई आहे जवाबु बिल्कुलु सही न आहे अताला खान ईसा खिलवी जो ख़ूबसूरत नगमो आहे इन टिन्ही दोस्तनि जे नाम

जी समयन अताला ईसा खेल जी न सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पांजे पजणी ते हयाती बखैर हयाती रही तमा सा जरूर मुलाकात थी ते सी तई पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुने जो के दींदा इजाजत अल्लाह ने कहा।

0: It's 11 a.m. This time check is.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. अब आप सुनेंगे

que tenía mi mamá. फौजी कम फिदाई दिफाई एंड ड्रोन्स लॉन्च साइट्स के निशान बनाए थो ईरानी मीडिया मूजिब तब्रीज चाबहा सिरक हरमुजगान बूशहर कोनाक में हमला किया गया बाजार इनकलाब पारा अबना हरमुज में ब तेल जहाज तबाह करने की दावा उदन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी जहाज से बैलिस्टिक मिजाइल से हमलों किया वो शाम के इलाके अल्तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से भी हमले की दावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है अमेरिकी फौज रात ईरान से शदीद हमला कया ईरान से हमला अमेरिकी फौजन के मारने जो रद्द अमल है फौजन के बाजी वजने से ढो दुख थो ईरान के धमकी दई सके थी न लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चवा है ईरान अगु का वधिक मजबूत ईरानी रचा थियल यूरेनियम विक्रो नथो करे सके असीं दिफाई चैंपियन स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुड़ी एक शिकस्त डेई आलमी चैंपियन बनी वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम के 16 साल बाद बो भेरों चैंपियन बनाए छो मैच जो फैसला है तो गोल इजाफी वक्त की बी हाफ में थो अर्जेंटाइन के गोलकीपर मार्टिनेज़ शानदार कार

0: पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाड़ाई जो रुझान 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटताई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो उडेरो लाल स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा मालगाड़ी के ट्रेक तक हटाने रेलवे ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों जारी कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन की अचवन 24 कलाक तीन मुअत्तल रही फैजगंज में वधंदड़ बदम के खिलाफ बहरान हाईवे बंद कर धरणो पुलिस खिलाफ नारेबाजी वकील व्यापार कौम परस्त कारकुन ने शहर रोड से शामियाना हणी धरणो हणी छो ट्रैफिक मुअत्तल थी वही अगवान का चवण है तो फैजगंज अमन तबाह थी वो है रोजानो फुर ए चोरी जहा वाक पेश अची रहा है पुलिस बदमी से जब्तों आने में मुकम्मल नाकाम थी वही है रहवासी गैर महफूज हैं मुख्तलिफ इलाक में फुरल गाड़ियों सामान वापस कराए अमन बहाल कराया वे
1: आप सुन रहे थे आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीए एफएम 88 नेटवर्क ते खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-003

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इट टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। और अगर हम प्रोग्राम में वक्त की बात करते हैं तो 11:18 पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजले खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजले खुदा खैर मौजूद और तवक्कुल खुदा खैर।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले

0: वो
1: पाकिस्तान की
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: मेरी
1: आवाज नहीं आ रही आपकी?
0: मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो
1: हेलो।
0: ओके जी, ये क्या इशू आ गया है, इसको हम चेक करेंगे।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं लाइन पे. हेलो. ओके जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे और चेक करेंगे जी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: आपका भाई नूर हुसैन सलाम बदीन. सिस्टर क्या हाल, ठीक हो?
0: जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं?
1: बस क्या, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है बाजी.
0: ओके, गाना सुनाएंगे?
1: गाना है उसका शमन मिलाली का,
0: सुना दे.
1: नथो विसरी मुखा नथो विसरी,
0: ये तो उस दिन भी सुनाया था ना आपने,
1: समाज फिल्म
0: उस दिन भी सुनाया था ना आपने. अब गाना चेंज करें ना.
1: गाना चेंज करूं?
0: हाँ, गाना चेंज करें ना.
1: हो सके तो मेरा एक गाना.

ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है जल्दी से. ओके अल्लाह हाफिज. थैंक यू. और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.

0: हिंदुस्तान की शान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, हरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: Aogi ji, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू. फिलहाल हम आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ. और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन कहाँ से.
1: बेटी वफा अब्दुल वहीद जतो ही बात कर रहा हूँ. बेटी शाबिल से तालको जिलो सखर है बेटी रुखसार.
0: ओके, जबरदस्त. मुझे बताएं गाना कौन सा सुनाएंगे.
1: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी. ताहिया हसीन जिंदगी की गुजरी वही या का.
0: हेलो. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और ये क्यों हुई है आई लिटरली डोंट नो. लेकिन ये है कि हम एक और गाने की तरफ भी चलेंगे और इसी के साथ हम प्ले क्या करेंगे, मैसेजेस और कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे. ठीक है जी, सो हियर कम्स अली जफर.

0: नहीं जाए।
1: आओगी जी, हम मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। हमें बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो चुके हैं जी। नजीर खोसो ने हमें कमेंट कर दिया है और नजीर खोसो कहते हैं कि ये सोबरपुर बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। अनवर अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं योर शो इज अ बिग

आज का टंग ट्विस्टर भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. आज का जो टंग ट्विस्टर है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कह के दिखाना है मुझे जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये कहना है जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, बहुत

बस अगर समझ के सुनेंगे तो बोलने में आसानी होगी, तो ये है. और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग जो कि हम कर भी रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये जो हमने कर दिया है, ये हमने करना नहीं था लेकिन ये हो गया है. अब ऐसे करेंगे कि हम एक और सॉन्ग की तरफ चलेंगे और वो जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिका जा ईरान ते नई रात पे हमला जारी। अमेरिकी फौज के सेंटकॉम जो चवण है तो ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फिजाई दिफाई निजाम मिजाइल्स ए ड्रोन्स लॉन्च साइट्स के निशानों बनाए वो। ईरानी मीडिया मुजिब तब्रेज चाबहार सिरक हरमुजगान बुशहर ए कोनार्क में हमला कया वा। अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण है तो ईरान ते हमला अमेरिकी फौजन के मारण जो रद्दमल है। फौजन के मारी वन ढो दुख थो है। मारी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए विढ़ी रहा हुआ तो ईरान एटमी हथियार न रखी सके। अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डन से हमला। बाजार ने इनकलाब चाहिए तो ऑपरेशन नसर बजे एक्वी मरहले में उर्दन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी सी 17 ट्रांसपोर्ट ए पी 8 कमांड जहाजन के निशानों बनाए वो। कुवैत के अलियम सालम अमेरिकी फजाई अड्डे से ड्रोन हमलों किया वो। रेडार गोदाम एम क्यू 9 ड्रोन हैंगर्स तबाह किया वा। अमेरिकी कार्रवाई जारी रहने तक आबना हरमुज महफूज न रहो। बाजार ने इनकलाब पारा आबना हरमुज में ब तेल जहा जहाज तबाह कर ए शाम के इलाके अल तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से भी ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनई ईरानी सदर जो खास पैगाम खड़ी अज पाकिस्तान पहुंचन। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए वफाकी वजीर से मुलाकात कन्द। नायब वजीर आजम इसहाक डार अनीता आनंद विच में भी वफदन के सतह से गालू थन्दूं।

ईरान खे न धमकी ॾेई सघजनि जे माजी वञण ते ॾाढो ॾुख थियो आहे। माजी वियल अमेरिकी फौजी इन मक़सद जे लाइ विढ़ी रहिया हुआ त ईरान एटमी हथियार न रखी। चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे। ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघिजे। स्पेन डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ी जे मुक़ाबले में हिक तां शिकस्त ॾेई आलम बोर्ड ते अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट ऐं P-8 कमांडनि जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो। कुवैत जे अलियल सालिम अमेरिकी फदाई अॾे ते ड्रोन हमिलो कयो वियो। रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमेरिकी कार्रवाइयूं जारी रहण ताईं आबला हरमुज़ महफ़ूज़ न रहंदो। बाज़ारनि इनकलाब पारां आबला हरमुज़ में ॿ तेल जा जहाज़ तबाह करण ऐं शाम जे इलाइक़े अल तनफ में अमेरिका जे कमांड सेंटर ते बि कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाड़ाई 100 इंडेक्स में 2000 खां वधीक पॉइंट्स जी घटताई रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,73,000 जे पॉइंट्स ते ॾिठी वई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

और जी सो गाना मेरे पास मौजूद है जी, बिलाल सईद की आवाज़ में इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी को सुनते सुनते हम आप लोगों की कॉल्स को भी एंटरटेन करेंगे।

0: जी कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद है और चेक करेंगे जी कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: जी हैदर बख्शी शेर बात कर रहा हूँ, तालका सुंदरी जिलो मीरपुर का।
0: हैदर बख्शी भाई मुझे ये बताएं, टंगटर शेर सुनाए बोलेंगी?
1: जी हाँ।
0: तो बोले
1: जी, चाबे एक बार रिपीट करो।
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले, ये चोरी ऑनलाइन करेंगे
0: क्या करें?
1: एक बार
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
1: जिस ताले की चाबी का ताला, जिस की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है? और कुछ कहना है? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है।

सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप पी रुखसार क्या हाल हैं? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें. हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो.

0: समझा।
1: अच्छा, इसके अलावा जी हमें मैसेजेस बहुत सारे मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो।

1-3-4-8-8, that is our live calling number. और कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कॉल नहीं रिसीव हो पा रही. क्यों ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों. मैं चाहूंगी कि कॉल रिसीव

इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा गाना प्ले कर दिया जाए और फिर उसके साथ लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जाए. अगर तो ब्रेक पे जाने से पहले कॉल वाला जो इश्यू है वो खत्म हो जाता है.

और गाना चेंज करने का कहा था मैंने. सो गाना चेंज करते हैं जी. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय साहिर अली बग्गा. आजकल साहिर अली बग्गा तानो वाले सॉन्ग्स गाने लगे हैं, तो इनका एक और नया तानो वाला गाना आया है. आए मिलके सुनते हैं और इंजॉय करते हैं.

0: पाकिस्तान की खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

Aoge ji, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है तेरे बिना और आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के जो कि हमें रिसीव होते जा रहे हैं. हाली सुल्तान के बहुत सारे कमेंट आए हैं. हाली सुल्तान सुन रही हैं, थैंक यू हाली सुल्तान. और गुलाम मोहम्मद मरी ने भी थैंक यू कहा है, किस बात का थैंक यू. और नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्स हम आप लोगों की एंटरटेन करेंगे. और हमारा बोलो तो माने सेगमेंट जो कि स्टिल हम कंटिन्यू करेंगे. सो जी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी चलेंगे. और बैक टू बैक बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद हैं. और नींद ना आए तेरे बिना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मजाक आप मजाक समझती हो? क्या मजाक समझती हूँ? कौन सी बात है जिसको मैं मजाक समझती हूँ? आपको मेरा मजाक है नहीं ना?

ये जी गाना चेंज करेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय बिलाल सईद. क्या खूबसूरत लिरिक्स हैं इस गाने के, इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

वो है जी हैदर बख्शर, जितनी हम कॉल्स ले सके उसमें, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हैदर बख्शर ने काफी ज्यादा अच्छा टंग ट्विस्टर बोला, बहुत अच्छी कोशिश की, और आज के विनर है जी

सलाम मोहम्मद मरी बलोच कहते हैं कि बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू. अच्छा, बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू. ठीक हो गया जी, बर्थडे विश भी हो गया. और इसके अलावा जी, आशिक खास के लिए को प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच. और ये कुछ कमेंट जो कि अब तक के बहुत सारे लोग रह चुके थे उनके अब इंक्लूड हो चुके हैं जी. और हमें ज्वाइन किया है जी सफदर बलोच ने मोरो से, कहते हैं आप किसी का मैसेज पढ़ना, किसी का मैसेज पढ़ना मतलब ओके जी, मैसेज आपका मैंने पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच. और किसी का मैसेज मतलब आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है और आगे मिसिंग पार्ट है. और इसके अलावा जी, गाना हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है. मैं ढूंढ रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ चल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा कि हम गाना चेंज करेंगे.

लास्ट वीक किसी ने कहा था प्रोग्राम में कि बिलाल सईद का खैर मंगदी प्ले करते हैं और हमने किया नहीं था शायद, सो अभी हम प्ले कर रहे हैं और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरी करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. थिंक हाई, सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: कुवैत जे अलियल सालम अमेरिकी फदाई अड्डे ते ड्रोन हमलो कयो वियो। रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर्स तबाह कया विया। अमेरिकी कार्रवाइयूं जारी रहण ताईं आबनाह हरमुज़ महफूज़ न रहंदो। पाज़ारन इंकलाब पारां आबनाह हरमुज़ में ब तेल जा जहाज तबाह करण ऐं शाम जे इलाइक़े अलतनत में अमेरिका जे कमांड सेंटर ते बि हमले जी दावा। ईरानी हमलनि सबबि पाणी साफ करण वारे प्लांट समेत शहर हंधनि खे नुक़सान पहुतो। कैनेडा जी परडेही वज़ीर ऐं ईरानी घरू वज़ीर अॼु पाकिस्तान जो दौरो कंदा। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अॼु पाकिस्तान पहुचंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं वफ़ाकी वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं अनीता आनंद विच में बि वफ़दनि जे सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान खे न धमकी ॾेई सघे थी न ई लालच। कुझु नुक़सान बावजूद ईरान असराइती आलमी ताक़त तौरु उभरियो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे। ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघे। स्पेन दिफ़ाई चैंपियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में हिक तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणिजी वियो। महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि खां पोइ ॿियों भेरो आलमी चैंपियन बणाए छॾियो। मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ में थियो। अर्जेंटाइन जे गोलकीपर मार्टिनेस शानदार कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल्स बचाया। वर्ल्ड कप जे 8 मैचेस दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जी फाथे टीम खे ट्रॉफी पेश कई। अर्जेंटीना जे रांदीगरनि खे चांदीअ जा तमगा ॾिना विया। ग्राउंड में स्पेन जे रांदीगरनि जो जशन। वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो।

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाराई 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटाई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो उरूलाल स्टेशन से मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल नहीं सकिया ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा मालगाड़ी के ट्रेक त हटाण ए रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जो कोशिशों जारी कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन की अचवन 24 कलाकन मुअत्तल रही कुंभ वेझो पढ़ियल लारी पुरस्कार तौर गोलियों लगण सबब बाजी वही नौजवान जख्मी गोठ छतल कलोड़ो में 19 महीने की रजियाज आल अब्दुल समद कलोड़ो हयाती विजाए वेठी फायरिंग के नतीजे में अली मदद कलोड़ो जख्मी थी पो लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल वाक़े बाबत कतुल तोड़े खुदकुशी जा चुबोल जांच कर रहा हूं सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा घोटके में नहरवाह के आबादगार सीधा डायरेक्टर के ऑफिस अगर एहतजाजी मुजाहरो कैरब नाथन शाह में हारन आबादगार केटीएन न्यूज के ऑफिस अगर निठण उस में धरणो हो दखण में निमशाखर के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो सन में शाह आवेश कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी लाखा लिंक रोड से धरणो हणी छो आबादगार चवण है आपाशी मलदार पानी मुंड के आबादगार के विक्रो कर रहा है जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये नुकसान थी रो है नोटिस वी पानी जारे वे

0: दादू में म्यूजिक टीचर्स उम्मीदवारनि जो ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ गाए वॼाए एहतजाज। म्यूजिक टीचर्स दौलत शरनाइन सां कलाम गाए अनोखो एहतजाज रिकॉर्ड करायो। एहतजाज में तुंहिंजे कूड़नि कूड़नि वाइदनि ते एतबार कयमि ऐं ॿियनि कलामनि जी गूंज। उमीदवारनि सजा सुमरो, जावेद अबासी ऐं ॿियनि जो चवण आहे त 319 म्यूज़िक टीचर्स जा ख़ानदान 3 सालनि खां बुख बदहाली जो शिकार आहिनि। नोटिस वठी ऑर्डर्स ॾिना वञनि।
1: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

पर आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं पर आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम और बहुत से वाली बातें करते हैं साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रिसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड डीजे सिद्रा मुस्कान मामियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सो भी अपने काम भी कीजिए हमें

सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती है भैया सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगाज प्रोग्राम कर लेते हैं और आगाज प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके बिल्कुल जी। सो यहाँ पर जरा बात की जाएगी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी जगह से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट का इंतखाब किया गया है। हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक्नी से परेशान हैं, साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, लोशन लगाने वाले लोग हैं, तो जनाब जितनी भी अगर आपके स्किन से रिलेटेड मसले हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल। तो यहाँ पर आज हम स्टार्टिंग करेंगे जी व्हाइट एज लवली क्रीम से, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम वो क्रीम होती है भाई जिस क्रीम की आप सब लोगों को जरूरत होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप मेकअप की जगह जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा सीन बना ले कि आप लोगों को ना गर्मियों में कोई मेकअप नहीं लगा पाता, तो गर्मियों में आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद हो जिसे आप बस लगाएं, चुटकियों में रेडी हो जाएं। और व्हाइट एज लवली क्रीम की अगर आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है, जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, और उसके अलावा जो है इसके अंदर आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा। रोजाना सुबह और रात मतलब आप इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुनासिब मकदार अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना वो ग्लो करने लग जाती है, आप लोगों को जो है ना वो निखार मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ना सिर्फ आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी बल्कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि जो आप लोगों के चेहरे को सूरज के इन असरात से जो है ना वो निजात क्या मतलब आपको बिल्कुल सेफ ही रखेगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन जो है वो गर्मियों में काफी ज्यादा खराब हो जाती है, गर्मियों में लगाने वाले प्रोडक्ट बहुत ही कम है मार्केट में, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर एक इंसान की जरूरत है और हर एक इंसान को लगानी भी चाहिए, बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ मर्द हज़रात और ख्वातीन हर कोई लगा सकता है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगा सकता है, कोई एज लिमिट नहीं, और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल यही होंगे कि आप बस अपना फेस वॉश करके अच्छे से बस आप जो है ना व्हाइट एज लवली क्रीम को अपने चेहरे पर थोड़ा सा मकदार लेकर लगा लेंगे। उसके बाद आपने कहीं जाना है, कोई जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस व्हाइट एज लवली क्रीम लगाओ और चुटकियों में रेडी हो जाओ। उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा है, एक्नी ने आपको परेशान कर रखा है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की अगर बात की जाए तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी का खात्मा है बल्कि एक्नी से रिलेटेड बहुत सारे जो मसले होते हैं ना उनका भी जड़ से खात्मा कर देगा। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का जो ट्यूब है ना अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सब जड़ी बूटियां ऐड की गई है। आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक पॉट्स हो, एक्स्ट्रा ऑयल हो, एक्नी किसी भी तरह का हो, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को जो है वो क्लियर बनाता है, बेदाग बनाता है, सूरत बना देता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। तो अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तो चाहती हूँ भाई लाजमी आप लगा कर देखिएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं, सर्दियों में कर सकते हैं, और लड़के लड़कियां सभी लगाएगी, टीनेजर्स खास करके, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी निकल आते हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार भी बहुत ज्यादा आसान है कि आप इसे सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगा सकते हैं। अगर ऐसा है कि एक्नी बहुत ज्यादा ही आके फेस पर एक्नी का मसला बहुत ज्यादा है तो आप तीन मर्तबा लगा लीजिए, कोई मसले की बात ही नहीं है। ओके जी, लगाने के तरीकेकार ये होंगे कि जहाँ पर आपके चेहरे पर कोई निशान हो, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है या फिर एक्नी हो तो वहां वहां पर आप लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, अच्छे से हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप अपने चेहरे पर जो है ना वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को अप्लाई कर दीजिए। वैसे भी कहते हैं कि जिनके चेहरे पर एक्नीज होते हैं ना वो बार बार आपने ना ऐसा करना है कि अपने फेस पर हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से जो है ना अपने चेहरे को बार बार टच करते रहते हैं आपको एक्नी पहले से बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके एक्नी जो ना वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं फेस पर। तो इन चीजों से थोड़ा गुरेज किया करें, हाथ फेस पर बार बार मत लगाया करें, और उसके अलावा जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी लगाया करें।
और अगर साथ में आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है और आपके पास व्हाइट एश का फेस वॉश भी मौजूद है जो कि भाई विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस वॉश है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिद्रा सही कह रही थी। और उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है और जी ये तो आप जानते हैं। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो अगर आप कोई नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए जो कि आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत बना देगी, आपके चेहरे के मसाइल को दूर कर देगी और आपको हमेशा जो है ना खूबसूरत बना देगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं कि हमारे गोठ में, हमारे सिटी में, हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो उसके लिए आप नंबर जो आपको बताऊंगी जरा वो डायल कीजिएगा। पहले भाई आप लोगों को एक नंबर बताती थी लेकिन अब हमारे पास जो ना नंबर्स का जरा इजाफा हो चुका है, तो आप लोग अगर नंबर जो है वो डायल करना चाहते हैं तो अगर आप सखर में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सखर में नंबर डायल करेंगे और सखर वाली ऑडियंस जो है वो हमारे साथ मौजूद है तो आप सखर वालों के लिए नंबर होगा 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं बस सारे लोग आपको जो नंबर भी सूट करे, जो नंबर भी आप नोट कर लें वो नंबर आप डायल कर सकते हैं। तो बाकी जो नंबर हैं वो है 03-32-73-84-309 बिल्कुल जी 03-27-38-43-09 ये नंबर्स आप डायल कीजिएगा क्योंकि महर इरफान सियाल साहब जो हैं वो उमरा पर गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई लिसनर्स को आप बोल दें कि वो जो है ना मेरे नंबर पर नहीं, ये जो दूसरी नंबर आपको बताए जा रहे हैं इसके ऊपर रابطہ करें और इस नंबर्स के ऊपर रابطہ करके उनसे मालूमात ले लें, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं। और महर इरफान सियाल साहब का नंबर आप कुछ दिन तक डायल मत कीजिएगा, ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। और जो नंबर आपको बता रही हूं वही नंबर आप डायल कीजिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं। तो जो नंबर अभी आपको बताएं वो जरा डायल कीजिएगा और साथ साथ आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है, ये दोनों इंसान थोड़े मुख्तलिफ होते हैं लेकिन आप बताएं इनमें फर्क क्या है और क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से या तो एक इंसान कामयाब हो जाता है या तो एक इंसान नाकाम हो जाता है।

क्या बात, एक लड़की के लिए इतना ही काफी है भाई। मेरी जवानी तेरे उत्ते निसारे, तू मेरी लगदी, ओ तू मेरी की लगदी। जियो करे बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे हो। साथ साथ प्रोग्राम है जी वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और जनाब जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ना, कैसी कंजूसियां हैं ये एक तो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, दूसरा पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं करे, अरे भाई कैसे चलेगा, ये मोहब्बतें दोनों तरफ से होनी चाहिए। ओके, साथ साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अनवर अली कहते हैं कि टॉपिक जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा और जो कोशिश नहीं करेगा वो नाकाम होगा। ओके ओके जी, कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ है दादू सी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तथा खालिद कहते हैं कामयाब इंसान तब बनता है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे, और नाकाम वो जो बस दूसरों पर क्रिटिसाइज करते रहे, खुद डोंट स्ट्रगल इन लाइफ। योर टॉपिक आंसर ओके। देखिए मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं बन पाते है ना ओके जी। उदास लड़की कहती है इस टॉपिक का जवाब बड़े लोग देंगे, हम बच्चे चुप करते हैं। अरे भाई और कितनी बच्ची बनोगी तुम। आने वाली थी भैया ले चले आदल कहते हैं कामयाब आई नाकाम इंसान में फर्क नतीजे जो न सोच आई अमल जो आए। दुनिया की नजर में, दुनिया की नजर में ऐसा समझूंगा

जाओ भी कहते हैं कामयाब इंसान ही मुश्किल आहे पर रस्तो निकरंदो नाकाम इंसान मुश्किल आहे तंहिं करे मां न करे सघंदुसि कामयाब माण्हू मसलन खे सबक समझे थो नाकाम माण्हू उन खे रुकावट समझे थो ऐं ॿियो अमल जो फ़र्क़ु आहे जी बहुत एक लंबा सा चौड़ा आपने कमेंट कर दिया है और मतलब बात जो है वो आपने बिल्कुल सही कर दी है सो क्या बात है बहुत शुक्रिया आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और लिखते हैं आदिल वो जैसे गुड बॉय बोल दी फराज खराब इंसान भी अच्छा बन सकता है अच्छा इंसान बन सकता है बिल्कुल जी इस चीज के ऊपर मैं भी बिलीव करती हूँ देखें बन गए हैं ना अच्छा मुखलिस हाशिम सुमरो भाई हमारे साथ हैं क्या बात है जी बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू और हैं जी हमारे साथ अमान मीनू कहते हैं इट्स सो गुड थैंक यू अली मुर्तजा कहते हैं ओके जी ओके मामा समान आपने टॉपिक के ऊपर बात कर दी है क्या बात है जी थैंक यू सो मच दर्द दिल कहती है कैसी है चंदा मैं ठीक हूँ आप बताएं प्यारी आप कैसी हैं और दर्द दिल कहती है कभी कभी इंसान का मजबूत होना ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती बल्कि ये होता है कि वो हर तकलीफ के बाद अपने दिल को अल्लाह के सुपर्द करना सीख लेता है असल सुकून लोगों के बदल जाने में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में होता है बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात ओके जी तो मेरी की लग दी क्या ही ट्रैक था बहुत खूबसूरत एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जरा हम सुनेंगे मुमताज मलिक का गाना होने वाला है चाचा तो के समझाया दस्त सही ओके जी गाना सुनेंगे और आपको बताएंगे माँ भी छा तांके समझाया बाबा तांजे खूबसूरती किथे लिखे लाए तवाज लकीडा भला भला मार्केट में प्रोडक्ट अची वया छा समझाया समझो ही न था

ओके जी, हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी अच गया, जगह मिलेगी या ना मिलेगी? जी मिलेगी, बैठ जाइए। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। मिठो देरो का तवां सा के ज्वाइन कयो आए मोहब्बतूं आए। रमजान अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कैसी हैं बहन? मैं ठीक हूँ भाई, जनाब बताएं कैसे हैं।

अच्छा मन तव्हां खे कंहिं शइ जी ख़बर ई कोन्हे का ईअं न कयो बाबा ईअं न कयो हाणे वॾा थी विया आहियो ऐं अञा ताईं अगरि तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु नाहे कयो त बाबा जल्दी इस्तेमालु कयो तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन प्रोडक्ट तव्हां इहो बि लाज़मी पुछा कजो जे तव्हांखे आसानी थी वञे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो उतां इज़ीली वठी अचो समुझो था

ओके जी, अरीबा हमारे साथ ये थी. आप उस दिन कह रही थी जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा. ओके जी, और सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाबशाह से कहते सॉन्ग प्ले करें ममताज मलाई हले तो बाबा बुद्धू. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम भाईजान. और अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी शो नाइस है, वाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं जी. क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. गानो थोड़ो नंढड़ो आहे न जेके थोड़ो पोइ ते करणो पियो. टाइम थियो बाबा न्यूज ब्रेक जो, न खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे. ठीक आहे, वापसी जल्दी मोटी तव्हांजी अचूं था. तव्हां खाली नवंजो हिते वेठा हुजो. मां सफ़ा ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हणंदा रहो जे तव्हां बि सुहिणा थियो, समझो नी.

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह जो अमन अमान बाबत इजलास के खिताब। इजलास में सीनियर वजीर शर्जी इना मेमण, घर वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ए बेन जी शिरकत। सैयद मुराद अली शाह चयो तो डोहन में मुलविद अंसरन के का भी रियायत न डिनी वेंदी। दहशतगर्दन मंशियात फरोशन ए फतेहखोरन खिलाफ कार्रवाई तेज कई वन।

0: अमेरिका जा ईरान ते नई रात बि हमला। अमेरिकी फ़ौज जे सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल्स ऐं ड्रोन्स लॉन्च साइट्स खे निशानो बणायो वियो। ईरानी मीडिया मूजिबि तबरीज़, चाबहार, शिरक, हरमुज़गान, बूशहर ऐं कोनार्क में हमला कया विया। अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण आहे त ईरान ते हमला अमेरिकी फ़ौजनि खे मारण जो रदअमल आहे। फ़ौजनि जे मारिजी वञण ते ॾाढो डुख थियो आहे। मारिजी वियल अमेरिकी फ़ौजी इन मक़सद जे लाइ विढ़ी रहिया हुआ त ईरान एटमी हथियार न रखी सघे। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा खिते में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ते हमला। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ऑपरेशन नसर 2 जे 21वें मरहले में उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट ऐं P-8 कमाननि जहाज़नि खे निशानो बणायो। क्वैत जे अली सालिम अमेरिकी फ़ज़ाई अॾे ते ड्रोन हमलो कयो वियो। रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमेरिकी कार्रवायूं जारी रहण ताईं आबनाह हरमुज़ महफ़ूज़ न रहंदो। पासदारनि इनकलाब पारां आबनाह हरमुज़ में 2 तेल जा जहाज तबाह करण ऐं शाम जे इलाइक़े अलतनफ़ में अमेरिका जे कमांड सेंटर ते हमले जी दावा। उर्दन हुकूमत जो चवण आहे त ईरानी हमलनि सबबि पाणी साफ़ करण वारे प्लांट्स समेत शहरी हंधनि खे नुक़सान पहुतो। ईरान खे न धमकी ॾेई सघे थी नई लालच। कुझु नुक़सान बावजूद ईरान असराइती आलमी ताक़त तौरु उभरियो। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे। ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघिजे। सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणो में घड़ियासीन जे आबादगारनि जो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जे ऑफिस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीबाह जे पुछड़ी जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। घोट जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जे ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। कैरप नाथन शाह में हारनि ऐं आबादगारनि KTN न्यूज़ जे ऑफिस अॻियां निठण उस में धरणो हुयो। ॾखण में निमशाख जे आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह अवैस कैनाल जे आबादगारनि एहतजाजी रैली कढी। लाखा लिंक रोड ते धरणो हुयो। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबब लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे। उडेरोला स्टेशन मां मालगाॾी सां हादसे सबब मुअत्तल थियल अप ऐं डाउन ट्रेक बहाल न थी सघिया। ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बि थियल। मुसाफ़िरनि खे रहियल भाड़ा वापसि कया विया। मालगाॾी खे ट्रेक तां हटाइण ऐं रेलवे ट्रेफिक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ट्रेन जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअत्तल रहंदी। कराची जे इलाइक़े नाज़माबाद मां 2 ॾींहं अॻु अॻवा कयल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
4: जाएगा, ताकि आप लोगों के जहन थोड़े से क्लियर हो जाएं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं तो आप लोगों की स्किन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप लोगों को पहले बता दूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है, ठीक है। जैसे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही डी स्किन के आप लोगों को लिमिटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। बिल्कुल जी, कहेंगे ये शुरू होते ही खत्म हो गया, बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो प्रोडक्ट है लेकिन इनके फायदे जो है ना वो इतने ज्यादा हैं कि क्या ही बताऊं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा पहले जान लीजिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि भाई खास करके उन लोगों के हिसाब से भी तैयार किया गया है जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन वाले लोग हमेशा भाई परेशान रहते हैं कि भाई हमारे लिए जो होते ना प्रोडक्ट सही से तैयार नहीं किए जाते, हमारे लिए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते, और उनकी स्किन ऐसी होती है कि भाई अगर वो कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब कर लें, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद जो ना उनको फिर से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता कि उनकी खराब हुई स्किन को रिपेयर कर सके। तो अगर आप इस तरह के किसी ट्रैप में फंस चुके हैं, इस तरह का कोई सीन आपके साथ भी हो रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको माइक्रोबीड्स फार्मुलेशन मिल रहा है और वाइटामिन ई बीड्स आपको मिल रहे हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, हाइड्रेट रखेंगे, और उसके साथ साथ जो है ना, और इसके अंदर यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको अल्फा आर्बुटीन मिल रहा है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं, उनसे बहुत ही ये मुख्तलिफ सा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की खास बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे और 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन नरम हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, और आपकी स्किन के अंदर जो है ना अंदर तक जाकर ये डीप आपकी स्किन को क्लीन करेगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी। आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, डार्क सर्कल्स हो, एक्नी मार्क्स हो, एक्नी हो, हर तरह के निशाना से आपको पाक रखती है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार ही इस तरह किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम चले आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बताते चलें कि ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो इस तरह का सीरम होता है जो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। यानी कि अक्सर आपने

देखा होगा बहुत से लोगों की स्किन ऐसी हो जाती है कि लगता है कि भाई अगले इंसान की जो स्किन है वो कहीं मुरझा सी गई है या ऐसी मरी हुई सी स्किन लग रही होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन खिली खिली नजर आए, आपकी स्किन पर ग्लो हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल जी डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश आपकी स्किन को बिल्कुल प्यारा बना देगा। तो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बिल्कुल जी एक नया सा रंग दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर्स हैं जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल जी नंबर आप नोट कीजिएगा, नंबर है 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 033-27-38-43-09। ये नंबर हैं जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। इनसे कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं और मजीद अगर आप कोई भी इनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप इनको बता सकते हैं कि कहाँ पर जाएं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी प्राइसेस हैं, ब्ला ब्ला जो भी पूछना चाहते हैं। तो बिल्कुल जी इस नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, पता ही नहीं चला। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो टॉपिक दिया है तो वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है।

जी क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहे हैं। यहाँ पर एम अंसारी लिखते हैं कि हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, और कुछ को हम चुभते हैं सुई की नोक की तरह। आई ली और जी कहते हैं कि यासिर अली शान अलीजा अलिशबा हिरा भी यू को सलाम और हेलो कह रही है। हेलो और जी और भी लोग हैं जिनमें आरिफा हैं, रिमशा हैं, उरूसा, फरहान, शकील का भी सलाम एंड हेलो, वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो।

0: 만지. ओके जी हिदायत अल्लाह, आपने जो गाना बोला है ना वो थोड़ा सा इंडियन गाना है तो इसलिए नहीं लगा सकते. और कहते वैसे आज एक
1: छोटी मोटी गाल खो
0: हाँ लगवा के ये रहेंगे, वो भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने गए हैं. तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए. दर्दी दिल आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू स्वीटी. सजाद हुसैन सुमरो हमारे साथ है. नजरी कहती है अगर वो अच्छा कहती है कि अरे यार वो सुना है ना गर्ल्स जितनी भी बड़ी हो जाएं बट वो हमेशा छोटी ही लगती हैं और हमसे छोटी ही रहेंगी. अच्छा हमेशा छोटी ही रहेंगी ऐसा क्यों भला, वो कभी ना कभी तो औरत बनेगी ना.

बिल्कुल जी, और आप भी परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती जनाब बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए ऐसा हुसैन जो हमेशा आपके साथ रहे, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में लीजिएगा डी स्किन फेस वॉश ताकि आपको मिले मुकम्मल हुस्न। ओके जी, रिहान अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आबिद बिरोही हमें सुन रहे हैं, हेलो आबिद भाई। अच्छा, शरीफ अहमद लगारी हमारे साथ हैं, हाय। अनवर भाई आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद समान कहते हैं वीआईपी शो एंड उससे भी ब्यूटीफुल है, अच्छा जग मेरी बात करें। थैंक यू। गाना सुनिएगा।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाकर देखा जी, बताइए जरा हमें भी। और यहाँ पर शोनी कहती है आप ही जान में वापस आ गई, आप ही कल वापस आई हूँ हम सब। चलिए जी, क्या बात है, आपकी छुट्टियाँ अभी तक चल रही है, एंजॉय करें भाई। और अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब काबिलियत है, इंसान काबिल है तो सक्सेस उसके पीछे होती है, अगर काबिल नहीं तो वो सारी उम्र सक्सेस के पीछे भागते फिरते हैं। कह सकते हैं।

क्या बात है, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे जी पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ है इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में, यहाँ पर आपको खूबसूरती की बातें बताई जाती है और अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए जाते हैं। तो साथ ही और साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक, यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453। अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: दुकान। अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

बताओ कि क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आपने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है मेरी जान व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपकी खूबसूरती का राज जो है ना अब इन्हीं के पास है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई अच्छा वाला सूटेबल जो है ना वो प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आता, आपने बहुत ट्राई की लेकिन आपकी स्किन के मुताबिक कोई प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो आप एक मरतबा ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, इसके अंदर केमिकल्स का भी कोई डर नहीं कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ना इसको तैयार किया गया है, और इसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन की हिफाजत करते हैं, स्किन को हाइड्रेट रखती है, स्किन को खूबसूरत बनाती है, और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। तो लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे और अपने चेहरे को चमकता हुआ बना देंगे। ऐसे किस साथ साथ आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो आपने डी स्किन का फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है, और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है, नंबर्स को जरा नोट कीजिए क्योंकि नंबर जरा चेंज हो चुके हैं, तो नंबर्स को नोट कीजिए ताकि आप जो है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके, और आपका ये

भाई जान, आपका मैसेज मुझे जरा समझ नहीं आया। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 78 मोरी से राजा हमीर चंद हैं, किशोर कुमार हैं, हीरा भाई हैं, और हैं जी अकबर कुंभर। अच्छा गानों तो हाँ चाहिए हुआ है, गानों हलाइंदा सी बिल्कुल भाजू मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया और शोनी की थी आप ही जान में। चलें ठीक है ओके। अच्छा फेसबुक पर प्रोग्राम सही चल रहा है, बताएं जरा मुझे।

बिल्कुल ही रमजान अली भाई हमें सुन रहे हैं। रमजान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अमीन मियू हमारे साथ हैं, वेलकम जी। अनवर भाई आपने पोइट्री लिखी है, खुद को इतना कीमती बनाओ कि खरीदने वाले को डर लगे। बिल्कुल जी, सही बात है। अली अकबर बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरण से। वालेकुम अस्सलाम भाईजान को खुश आमदीद कहा जाता है। साजन कुमार हमारे साथ है फ्रामीपुर खान। ओके जी बिल्कुल, दाऊ करण मां कुछ कौन मिलंदई, बस तमा पांजी स्किन ते ख्याल करो, स्किन जो ध्यान रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले ते तमा नंबर से राबतो करो और इनका मालूमात वठो। भाईजान असा गाड़ी वन्यू असा किथा वठू तांगे बुधाए छडिंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेकर तमा इस्तेमाल कंदा त तमा जी खूबसूरती तमा के मिली वेंदी। आई तमा जी स्किन अगर सेंसिटिव आए त तमा के त लाज़मी लगान घुरजे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सफा सोने तरीके से तैयार कई वई आहे, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। लास्ट में ट्राई करे दिसो मजो अच्छी वेंदव। अच्छा निदड़ी कहती है कि मेरे साथ मेरा बंदर भाई भी आपका शो सुन रहा है, सुकून से शो भी नहीं सुनने दे रहा। चलिए जी अच्छा हसनैन मल्हा आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक कैंसर कामयाब, इंसान के पीछे वाइट एश ब्यूटी क्रीम का हाथ होता है और नाकाम इंसान के पीछे दूसरी क्रीमों का हाथ होता है। सही बात है वैसे। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, वालेकुम अस्सलाम भाई जान खुश रहे। और शाहिद अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ ही रुखसार मरी मीरपुर खास से कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप सिद्रा शो सुन रहे हैं आपका, आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, विश कीजिएगा। ओके जी स्वीटी को हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, सलाम। सही बात है वैसे। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, वालेकुम अस्सलाम भाई जान खुश रहे। और शाहिद अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ है रुखसार मरी मीरपुर खास से कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही सिद्रा शो सुन रहे हैं आपका, आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, विश कीजिएगा। ओके जी स्वीटी को हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, सलामत रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। और आप हमारा शो सुन रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और वफा शहजाद मक्सी हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद है जी, खुश रहें, थैंक यू, आप भी खुश रहें। अली अकबर ब्रोही भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और चनेसर थेबू हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी दर्दे दिल क्या कहते हैं, कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान असल फर्क और वसाइल का नहीं होता, रवैये का होता है। ये फर्क बजाहिर बहुत छोटा नजर आता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही छोटा सा फर्क किसी को बहुत आगे ले जाता है और किसी को वहीं रोक देता है। चंदा मुझे तो यही समझ रहा है। चलें जी बहुत बेहतरीन, नाइस। ओके जी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।

आमदी अब्दुल गफारो में सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा खाली जूनी जो, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और अनवर भाई कहती आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी है, बहुत शुक्रिया जी, अब आपको याद आया। दर्दे दिल कहती हाय चंदा, इतनी अच्छी पोइट्री सुना दी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू। नजीबुल्ला बिरोही कहते हैं कैसी आप, मैं ठीक, आप बताए आप कैसे। डॉक्टर अब्दुल गफार हमें सुन रहे हैं जी, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। और नखा अलावा नेटवर्क का थोड़ा इशू है, वाकई पता नहीं ये कब ठीक होगा। और मीर शौकत अली में सुन रहे कहते हैं माशाल्लाह नाइस शो, थैंक यू मीर शौकत अली कहते हैं जी। ओके चल रहा है अब बेहतरीन, थैंक यू। और आप हमें सुन रहे हैं कहां से, लकी वन मॉल, थैंक यू। नजीबुल्ला बिरोही कहते हैं कैसी आप, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे। डॉक्टर अब्दुल गफार हमें सुन रहे हैं जी, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। और नखा अलावा हमारे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, वाकई पता नहीं ये कब ठीक होगा। और मीर शौकत अली में सुन रहे कहते हैं माशाल्लाह नाइस शो, थैंक यू मीर शौकत अली कहते हैं जी। ओके चल रहा है अब बेहतरीन, थैंक यू। और आप हमें सुन रहे हैं कहां से, लकी वन मॉल कराची। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। हाँ जी, यकीन जाने जब आप ट्राई करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। मेरे अंदर की हिंदी जो है ना वो जोर से निकल आती है। ओके जी, रमजान शर भाई हैं कराची से, आप हमें सुन रहे हैं। ओके क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नजीबुल्ला भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू। मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक का दूसरा आंसर है

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल गफार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्यार अली जरवार बाजी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, कहते माशाल्लाह योर शो, थैंक यू सो मच प्यार अली भाई, आपको वेलकम कहा जाता है।
0: मायरा हमारा शो सुन रही है, मायरा आपका बहुत शुक्रिया।

ओके जी, सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डेज इन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था बिल्कुल जी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हमें जरूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से लिसनर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और रमजान भाई, यदि हम आपको अच्छा कसीदा जो होता है ना मेरे भाई, मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाती हूँ, प्रोग्राम के बीच में नहीं लगाती, तो आप कसीदे की फरमाइश जो कर चुके हैं तो मैं आपका कसीदा कल आकर लगा लूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अली शेर मरी भाई हमारे साथ, वालेकुम असलम। अली मुर्तजा कहते हैं कि मैं एक

0: बसे थी।
1: यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रही है करें जी, एंजॉय करिए। और यहाँ पर हमारे जाने का वक्त आ चुका है और निदली कहती है कि अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो चलें जी, मिलते हैं हम आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में। 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी, सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। और जरा कोशिश करें कि आपसे जो लोग हैं ना वो ऐसा हो कि बस थोड़े से राजी रहे, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे लोगों को राजी करने की तो तकरीबन वो कोशिश जो होगी ना, वो कोशिश और एफर्ट जो है ना वो देखे जाते हैं। ये चीज नहीं कि कितने लोग राजी होते हैं कितने नहीं, बस आप कोशिश करते रहें। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत, बड़ी मिलूं था 5 बजे। मानो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कितने का गलती थी हुजे त माजरत कंहिंखे अहिड़ो लफ़्ज़ सुठो न लॻो जेको मूं ॻाल्हायो हुजे तव्हांखे सुठो न लॻो, हुन जे लाइ माजरत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Kli Heat Soap.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

ईरान ऐं अमेरिका जा हिक ॿिए ते नाएं ॾींहं बि शदीद हमला। अमेरिकी फज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं पोजिस्तान ताईं पखिड़िजी वियो। महाशहर बंदर इमाम, तबरीज, बूशहर, हर्मुज़गान, दासक, सीरक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान जो बि जवाबी वार। उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमेरिकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अलियल सालिम अमेरिकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमेरिका इराक में हिकु अमेरिकी फ़ौजीअ जे मारजण जी तसदीक करे छॾी।

ईरानी घरों मंत्री इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रिए मूजिब इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि जे लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरों मंत्री वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, घरों मंत्री ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिनि ॾींहनि खां जारी ऑपरेशन में हेलि ताईं 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह करे हथियार हथु कया विया। मंबाती बारकज़ई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वरी वधी सैयद बराज अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शहजील इनाम मेमून, घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद बराज अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कारवायूं तेज़ कयूं वञनि।

सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा ए धरना लाड़कानो में घड़ियासिन के आबादगारों के इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर की ऑफिस बहरा धरणो रोहड़ी में कादीवाह के पुछड़ी के आबादगार एहतजाजी मुजाहरों कर घोटिए में डहरवाह के आबादगार सीडा डायरेक्टर की ऑफिस अगैं एहतजाजी मुजाहरों कर खैरब नासन शाह में हारे ने आबादगार केटीएन न्यूज की ऑफिस अगैं निटहण उस में धरणो हो दखण में निम शाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों कर सन में शाह आवेज कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी लाखा लिंक रोड से धरण हणी छो आबादगार चवण है आपाशी अमलदार पानी मुंडे के आबादगार के विक्रो कर रहा है जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये जो नुकसान थी रो है नोटिस वी पानी डाय वे सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पानी की खोट खिलाफ धरणो टे ढी भी जारी अगवान जो चवण है टिन ढीन का सख्त गर्मी में धरणो हणी वेठल आयो पर जायज मुतालबा मंजूर नहीं कया वा पानी जारण के लिए आबाशी खाते के चीफ इंजीनियर के चौवी कलाक की मोहलत डिनी है अज शाम मुतालबा तस्लीम न थे तो मुशावरत बाद बबलो बायपास से धरणो हणंदी असा रोड ब्लॉक कर आवाम के तकलीफ दियन ना चाहूं पर पानी खातिर एहतजाज कदासी।

फैज़गंज ऐं कंबर में शहरनि जा बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंबर में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि प्रेस क्लब अॻियां टायर साड़े धरणो हुयो। फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शामियाना हणी धरणो हयो वियो। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी अॻवाननि जो चवणु आहे त फैज़गंज जो अमन तबाह थी वियो आहे, पुलिस ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। उडेरो लाल स्टेशन भरिसां मालगाड़ी सां हादसे सबबि मुअत्तल थियल अप ऐं डाउन ट्रेक बहाल न थी सघिया। ट्रेन्स मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िरनि खे रहियल भाड़ा वापसि कया विया। मालगाड़ीअ खे ट्रेक तां हटाइण ऐं रेलवे ट्रैफ़िक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकुरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन्स मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल। ट्रेन्स जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअत्तल रहंदी। कराचीअ में 34 साल अॻु सरकारी बस जे टकर में माज़ूर थियल शख़्स खे 1 करोड़ ॾंढ भरे ॾियण जो हुकुम। सीनियर सिविल जज ॾखण जी अदालत 34 साल अॻु रोड हादसे में माज़ूर बणियल शख़्स जे हर्जाइण वारी दावा ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। किशन लाल कोरंगीअ में सरकारी बस जे टकर सबबि माज़ूर थी वियो हो। अदालत चयो त रिकॉर्ड मां साबित थिए थो त हादसो ड्राइवर जी गफ़लत सबबि पेश आयो। सरकारी बस सां हादसे जी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत ते बि लागू थिए थी। अदालत जो सिंध हुकूमत ऐं लाॻापियल धुरियुनि खे 3 महीननि अंदरि फरियादीअ खे 1 करोड़ रुपया हर्जाणो भरे ॾियण जो हुकुम। कराची जी अदालत मंशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकीअ जे गिरफ़्तार भाउ खे वधीक ॿिनि केसिस में 1 ॾींहं जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस जवाबदार खे रिमांड जे लाइ अदालत में पेश कयो। जांच आफ़िसर मूजिबि जवाबदार खे 18 जुलाई ते गिरफ़्तार करे 2 किलो 60 ग्राम चरस हथ कयो वियो हो। कराची जे इलाइक़े नाज़माबाद मां 2 ॾींहं अॻु अॻवा कयल 2.5 महीननि जो ॿार लो बाज़ियाबु। पुलिस जो चवणु आहे त ॿार जे अज़ान खे ठटो वेझो कार्रवाई करे बाज़ियाबु करायो वियो। आई जी सिंध जावेद आलम ओढो जी पुलिस टीम खे शाबासी। आई जी सिंध चयो त वाकिए जी शफ़ाफ़ जांच करे अॻवा में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।

एक शख्स गांव में, एक शख्स मक्कई के बुने हुए भुट्टे के दाने खा रहा था। खाते हुए एक दाना नीचे गिर गया। करीबी एक खड़ा हुआ मुर्गा दाने पर झपका, लेकिन मुर्गे के पहुंचने से पहले ही उस शख्स ने दाना उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। दाना उसकी सांस की

0: हाल में जहाँ पर सांस से सांस लेने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, वो बहुत से हॉस्पिटल्स में गया लेकिन इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। आखिरकार हॉस्पिटल वालों ने इसके इलाज की हामी भर ली, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और ये बात तुम्हें लिखकर देना होगी। उसने लिखकर दे दिया। वैसे भी उसका जीना बहुत दुश्वार हो रहा था, घर वालों से मिलने के बहाने वो गांव वापस गया। जो ही घर में दाखिल हुआ उसे जोरदार छींक आई, जिसके साथ ही दाना भी जो है अचानक उसकी जो है सांस की नाली से यानी नाक के रास्ते जो है बाहर निकल के जा गिरा। पास वही मुर्गा खड़ा था और उसने वो दाना इत्मीनान से चुग लिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और कोई कुछ भी कर ले, किसी दूसरे का रिस्क नहीं खा सकता, ये है रब्बे कायनात की तकसीम। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेन को जी अमीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आने अरे सब दोस्त हमारे, और जनाब आज का मौजू गुफ्तगू भी आपको बताते चलें, क्योंकि आज इस टॉपिक के हवाले से होनी है आपसे हमारी और आपकी गुफ्तगू।
1: इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है मगर चक्की।
0: अरे जनाब आपने मुझे ये बताना है आज के
1: बहुत बारीक पिसता है,
0: जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, ये आपने मुझे बताना है। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, और ये बताने के लिए आपने जो है डायल करना है 03136615688 03136615688। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, हमारी और आपकी लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत से तजुर्बात प्लस मुशाहदात होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आपने जिंदगी से सीखा है, ये बताने के लिए SMS के थ्रू अगर आप बताएंगे तो मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MPK, एक स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है अपना नाम और पैगाम, और SMS रवाना कर देना है 8881 पर। आपका SMS पहुंचेगा हम तक और ये मैसेज आपका हम अपने प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम करेंगे। अगर आप फेसबुक के जरिए फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू प्रोग्राम का प्यारा सा हिस्सा बनना चाहते हैं तो GFM88 के फेसबुक पेज पे आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। आपके फेसबुक कमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। चलते हैं अपने सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है। आपकी मैंने जिंदगी में यही सीखा कि बस जो रहे वही सब है, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए सिवाय अल्लाह ताला के।
0: सही, चले क्या कहेंगी सब सुनने वालों से?
2: सब सुनने वालों को मेरी तरफ से चार भरा सलाम। अंकल श्याम और मशा को भी बहुत बहुत सलाम, बहुत खुश है उन्होंने कॉल की थी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे।
0: थैंक यू सो मच दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: जनाब, आपने आपसे पूछा जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है आपने, और ये जानने के लिए अपने कॉलर्स को शामले प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आदी।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: अभी कुर्बान अली कासकली को बनाया गोता जी, गुलाम कासकली लग झंडो मर गया।
0: अदा क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: अभी ऐसी जो जिंदगी लेसन के बारे में ये समझाया था कि कौन सा सबसे काबिल एहतराम का मानू जो पेश किया है, और गरीब की मदद करता है, और जिसके मानू बे पहुंचे हैं के वादे वास्ते हैं कि
0: ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। एक लंबी लिस्ट होती है दोस्तों की आपके। नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? डीके कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: अच्छा, कुछ सब अपने होते हैं, कोई किसी का नहीं होता।
0: हाय हाय, आजकल आजकल मैं यही सोच रही थी डीके, जो आपने बताया
2: ये हकीकत को जाना है, मेरी उम्र तो कम है लेकिन मैं जमाना देखा है।
0: हाँ, जब लाइफ में जो
2: इंसान को पहचाना है,
0: जब इंसान की लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है ना, तब पहचान हो जाती है हमें सबकी। क्या कहेंगी सब सुनने वालों से?
2: बस सबको सुनाओ।
0: चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब, जिंदगी के सब जिंदगी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, टॉपिक को समझना है। और मुझे किसी ने लिख के भेजा है अस्सलाम वालेकुम, तो जिसने भी भेजा उस समय तमाम सुंदर समातों को ढेरों ढेर सलामती। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अदा वेलकम कहेंगे टॉपिक के बारे में, क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों को याद करें।
1: अभी कुर्बान अली कासकली, अभी सोलंकी, अभी दरबारे अली रजा लिखी है, जुमा मंसूरी है, यार मंसूरी है।
0: ठीक है जी, ओके। और जनाब, आपने बताना है आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहूँगी, कौन बात कर रहा है?
3: रुस्तम अली पवार बात कर रहा हूँ, पुनो खान पवार से।
0: अदा वेलकम कहेंगे, आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा है?
3: हमने ये सीखा है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और वालदों की खिदमत चाहिए, वालदेन की।
0: ठीक है।
3: और प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलना चाहिए।
0: चले ठीक हो गया अदा, बहुत शुक्रिया।
3: और अली रजा लगा रही और सब दोस्तों को सलाम।
0: चलिए जनाब, वालेकुम असलाम सबकी जानिब से, आपके लिए भी ढेरों ढेर सलामती। आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
0: अली रजा लगारी, आपका नाम लिया, आप हाजिर हो गए, क्या कहें? आपकी उम्र माशाल्लाह बड़ी है, या वो क्या कहते हैं, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, दोनों में से कौन सा वाला बोले आपके लिए, ये बताएं।
4: बिल्कुल, देखो घणो चाहे तो वो दिमाग हाजिर थेला तो असन सवाल है, हाजिर वासी तो है बुझ रहे हैं
0: जी। क्या कहेंगे टॉपिक के लिए, जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है आपने?
4: इज्जत करना, देखो वजन जी आए, देखो मोहब्बत प्यार देना है, मोहब्बत सिखाना है, अदरक सिखाना वो असन जो है जिंदगी में आए, अते भी सिखाई ना सीखना वजन जी, अदरक करना वजन जी का चेहरे में रहना, देखो लग रहा है
0: चले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप शाम के प्रोग्राम हुए, दोस्तों को याद कर लें। सभी पारा वालेकुम अस्सलाम अदा, मेहरबानी तवाजी तवा सा के ज्वाइन कयो, और यहाँ थोड़ा सा सांस ले लें हम ना, मतलब सांस वो वाला नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं जब जिंदा है, मतलब के खामोशी के वक्त पे जाएंगे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानी जाएंगे, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा, मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: ध्यान दे या फिर डीजी लॉकर पर मौजूद मार्कशीट को ही ऑफिशियल रिजल्ट तस्वुर करें। मुतासर तालिब इल्म का कहना है डिजी लॉकर मरकजी हुकूमत का सरकारी डिजिटल दस्तावेजी प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अगर वहाँ गलत मार्कशीट अपलोड होती है सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा इंतहाई संगीन मामला है और इस मामले पर जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फिलहाल कोई सरकारी या पर्सनली बयान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, नहीं जारी किया गया है, जिसके बाइस तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद और यूनिवर्सिटी में जो रजिस्टर्ड तुलबा और तालबात हैं उनके वालदेन सख्त तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। वो यूनिवर्सिटी हुकाम से उस हवाले से वजाहत तलब कर रहे हैं। तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा जी, अभी पड़ोसी मुल्क की यह खबर यह भी है कि रियासत मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में बारिश की कमी, कमजोर मानसून के बाइस शहरियों ने अनोखी रिवायत पर अमल करते हुए जो है डोंकीज यानी गधों को गुलाब जामुन खिलाए ताकि इलाके में बादल बरस सके और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने जमा होकर गधों को मिठाई खिलाई और इस अनोखे मंजर ने वहां से गुजरने वाले लोगों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवा ली। इसी वजह से इनकी जो वीडियोस हैं वो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है शहर के बीचों बीच शहरी बारिश के देवता को खुश करने की कोशिश में गधों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं और ये रिवायत एक कदीम मकामी अकीदे पर मबनी है। ये इस वक्त की जाती है जब मानसून में ताखीर हो या बारिशें ज़रूरत से कम हो और इनका मानना है ये अलामती नजराना बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश कर सकता है जिससे इलाके में अच्छी बारिशें होने की उम्मीद होती है। तो जनाब ये हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में और हमारे यहाँ कम से कम मीरपुर खास सिटी का वेदर तो कदरे बेहतर है। हमारे शहर में जो है ठंडी हवाओं का राज है, माशाल्लाह से अच्छी अच्छी सर्द हवाएं चल रही हैं। दोपहर के टाइम भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी वाली हवाएं नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, यहाँ जो है हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। बर्तानिया के शहर नॉटिंघम में मुख्तलिफ दुकानों से कीमती चॉकलेट्स और दीगर अशिया चुराने वाली 35 साल खातून को अदालत ने 16 हफ्तों की कैद सुना दी है। और तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा ने मारूफ होटल से चॉकलेट होटल से तकरीबन 851 पाउंड मालियत की लग्जरी चॉकलेट्स चुराई, जबकि बाद अज़ां वाटर स्टोन स्टोर से भी। ओ माय गॉड, अच्छा मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने इतनी सारी चॉकलेट सुनाई सीसीटीवी कैमरा में, वहां पर कोई भी नहीं था मौजूद। ये बड़ी हैरतअंगेज बात है। एनीवे जनाब, अच्छी खासी चॉकलेट्स जो है चोरी करने के बाद गिरफ्तारी के वक्त शार्लेट जोन्स ने बहुत ही मासूमियत के साथ पुलिस ऑफिसर से सवाल किया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर उसने जवाब दिया, पुलिस को मतलूब है इसलिए आपको देखते ही गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद अज़ां नॉटिंघम मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में मुलजिमा शार्ल्स जोन्स ने जुर्म का इतलाफ कर लिया। उसके बाद अदालत ने 16 हफ्तों की कैद की सजा सुनाई, 156.69 पाउंड बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। और नॉटिंघम शायर पुलिस के मुताबिक शार्लेट जोन्स मुसलसल चोरी की वारदातों के बाईस मुकामी दुकानदारों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन चुकी थी। तो जनाब ये हाल है जनाब। एनीवे खैर, हम यहाँ पर वापस अपने स्टूडियो आ जाते हैं। बर्तानिया से वापस मीरपुर खास स्टूडियो आ चुके हैं हम और घड़ी की जो सुइयाँ हैं ना वो हमें बता रही हैं कि हमने यहाँ एक ब्रेक लेना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रिए मूजिबि सिकंदर मोमनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि जे लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

0: सिंधा कोर्ट सखर बेंच डहर के अगवा जा रहा नारी फहमीदा पितापी के 10 अक्टूबर तीन बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म दई छो। सरकारी वकील की माफी का आईजी सिंध ए घरू सेक्ट्री जहां जमानत जुगा वारंट्स वापस अदालत औरत की बाजाबी बाबत दरख्वास्त वापस वठने से भी सख्त कावड़ जो इजहार किया तो पुलिस दबाव वी दरख्वास्त वापस नथी कराए सके। अदालत जो डीआईजी नासिर आफ्ताब पठान के नारी 10 अक्टूबर तीन बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म। फैजगंज के कंबर में शहरन जहां बदमनी खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना कंबर में वधंदड़ बदमनी खिलाफ शहरन प्रेस क्लब अगे टायर साड़े धरनो हो। फैजगंज में वधंदड़ बदमनी खिलाफ बहरान हाईवे से शामियाना हणी धरनो हो। पुलिस खिलाफ नारेबाजी अखबार जो चवण है तो फैजगंज जो अमन तबाह थी वो है पुलिस द्वार खिलाफ कार्रवाई नथी करे। उडरोला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रैक बहाल नथी सघिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338 5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब

पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोटापे की शरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह सेहत का एक बड़ा मसला बन चुका है। मोटापे से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सतह बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा दिल के अमराज में कमी का बायस बनने वाले अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर देता है, जिससे दिल के अमराज के खतरात बढ़ जाते हैं। और मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अमराज कल्ब का एक बड़ा सबब है। और मोटापे से लाहक होने वाले अमराज कल्ब में शरियानों की बीमारी, दिल का दौरा, दिल की धड़कन में बेकायदगी, अनजाइना और अचानक दिल का दौरा शामिल हैं। और अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मोटापे का शिकार किस फर्द को कहा जा सकता है और कौन मोटापे में शुमार नहीं होता। आम तौर पर जिस्म में ज्यादा गोश्त वाले अफराद को मोटा कह दिया जाता है, लेकिन ये बात ज्यादा दुरुस्त नहीं है। हमारा जिस्म पानी, लम्यात यानी प्रोटीन, चिकनाई, नशास्ते, कार्बोहाइड्रेट्स, नमकियात और हयातीन यानी विटामिन्स पर मुश्तमिल है। अगर किसी फर्द के जिस्म में चिकनाई की मिकदार ज्यादा हो जाए तो उसे मोटा कहा जाएगा। अगर तिबी नुक्ते नजर से बात की जाए, ऐसा शख्स जो अपने कद के हिसाब से ज्यादा भारी जिसामत का मालिक हो, उसे हम ज्यादा वजनी या फरबा कह सकेंगे। और अगर कोई फर्द ज्यादा वजन के मरहले से आगे बढ़ जाए तो उसे फरबा कहा जाता है। अगर कोई फर्द फरबही की हद से निकल जाए, इतना मोटा हो जाए कि उसे न सिर्फ रोजमर्रा के कामों में दुश्वारी पेश आ रही हो, बल्कि इस मोटापे की वजह से बीमारियां भी लाहक हो रही हो और अंदरूनी अज़ा तक मुतासिर हो रहे हों, तो उसे तिब की जबान में खतरनाक हद तक फरबही का नाम दिया जाता है। हर फर्द का कद उसकी जिसामत दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लिहाजा वजन की किसी एक मकदार को मैार बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि इससे ज्यादा वजन वाले अफराद मोटे हैं। यही वजह है कि हर फर्द के लिए आइडियल वजन मुख्तलिफ होता है, जो उसके कद को मद्देनजर रखकर मालूम किया जाता है। और इसके लिए दुनिया भर में जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, इसे BMI का नाम दिया जाता है। किसी भी फर्द का BMI इसके कुल वजन को कद के मीटर से मुरब्बा से तकसीम करके मालूम किया जा सकता है। अगर BMI की बुनियाद पर अमराज़ी कल्ब में मुब्तला होने का जायजा लें तो मालूम होता है दरमियानी उम्र की वो खवातीन जिनका BMI 23 से ज्यादा 25 से कम हो, उन्हें दिल की शरियानी बीमारियां होने का खतरा 50% होता है। 60 से 65 साल की उम्र जिनका BMI 25 से ज्यादा और 29 से कम हो, उन्हें यह खतरा 72% तक होता है। तो हतमी तौर पर यह कहना है कि हर फर्द को दिन भर में कितनी कैलोरीज दरकार होते हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल एक फर्द को वजन कम करने के लिए औसतन 1500 कैलोरीज रोज घटानी चाहिए। आप किसी माहिर गजा से मशवरा करके अपने लिए मतवाजन गजा का चार्ट बना सकते हैं। वजन में कमी के लिए जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफा जरूरी है और इसके लिए आप बाकायदगी से वर्जिश करें। अगर मोटापे की आखिरी हद में तो मजीद वक्त जाया करने के बजाय फौरन अपने मालिक से राबता करें, ताकि आपको इस वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों से अपने आप को महफूज रख सकें। और जनाब डॉक्टर को फॉलो करना है आपने, जो आपका मालिक है उसको फॉलो करना है, उसकी बात पे अमल करना है आपने। मोटापा इंसानी जिस्म की ऐसी तिबी हालत है जिसमें इंसानी जिस्म पर चर्बी चढ़ जाती है और इंसान का वजन ज्यादा, उसकी तौन निकल आती है, उनके शिकम पे 2.5 गुना ज्यादा चर्बी चढ़ जाती है, और जो 8 घंटे से ज्यादा नींद ले उनके बदन पर भी इतनी ही चर्बी चढ़ती है। लिहाजा अगर आपको अपना वजन कंट्रोल करना है तो रात को 6-7 घंटे जरूर सोएं। लाखों पाकिस्तानी हर हफ्ते खाते पीते वक्त तकरीबन एक गैलन सोडा वाटर जो है वो पी जाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। और माहिरीन का कहना है जो मर्द या ख्वातीन रोजाना एक

बोतलें पिए, यानी कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत और दीगर जो कीमियाई शक्कर और ड्रिंक्स होती हैं, तो उनके जेरे असर खाना जो है वो ज्यादा खाया जाता है। और बाजार में कम चिकनाई वाली कई गिज़ाएं भी दस्तियाब हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। वजह ये, इनमें कुछ कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन इस अमल के दौरान चिकनाई की जगह कार्बोहाइड्रेट ले लेता है, और नशास्ता हमारे जिस्म में पहुंचते ही तेजी से हजम होता है, शक्कर की सतह बढ़ा देता है। और जब शक्कर की सतह कम हो तो हमें फौरन भूख लग जाती है, और इसी वजह से इंसान मोटापे का शिकार होने लगता है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद दोपहर या रात को एक वक्त खाना नहीं खाती है। बहुत से ख्वातीन और मर्द हजरात दुबला होने की खातिर ये अमल अपनाते हैं। मसला ये है कि खुसूसन नाश्ता छोड़ने वाले जो हैं वो खुद को मोटापे का शिकार बना लेते हैं। वजह यही है, खाना तर्क करने से हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त होकर भूख बढ़ा देता है, और इंसान खाने में मामूल से ज़्यादा ग़िज़ा खाता है, जो मोटापे की बड़ी वजूहात में से एक है। और कई होटल और रेस्टोरेंट में अपने जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें किसी मखसूस दिन कोई ख़ास ग़िज़ा, मसलन चिप्स बिस्किट वगैरह मुफ्त दिए जाते हैं, ताकि लोग मुफ्त मिलने वाली ग़िज़ा को किसी तौर ज़ाया नहीं करते और दिल लगा के इन चीज़ों को खाते हैं। सूरत में वो अपने खाने में कम से कम 300 कैलोरीज का इजाफा कर बैठते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करने का इरादा रखते हैं तो आपको दिन भर में अपने खाने पीने की हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। खाने से पहले आप ये देखें इसमें ग़िज़ाई अज़ा और कैलोरीज की कितनी मिकदार है।

0: स्टाइल पहर की
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, अंदाज बदल लेना आवाज बदल लेना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, अंदाज बदल लेना आवाज बदल लेना। दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आया रफ्तार बदल लेना, अगयार वही रखना अहबाब बना बदल लेना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, रास्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दे दो कतरा के निकल जाना, हर एक से जुदा रहना हर एक से खफा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राहिल को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, एक खेल समझ लेना शिद्दत की मोहब्बत को, जब चाहे चले जाना जब चाहे चले आना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, अंदाज बदल लेना आवाज बदल लेना। दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। जनाब ये प्यारी सी शायरी हमें लिख के भेजी है दर्द दिल ने, बहुत शुक्रिया आपका चंदा, थैंक यू।

और जनाब अब्दुल रजाक को वेलकम कहते हैं, मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, एजाज कुंभार, हॉले पोटा स्टाफ से शो सुन रहे हैं, भली कार चौं दादा तमा सबनी के थैंक यू, मेहरबानी तमा जी, आपने दो अदद मैसेज सेम किए हैं, शुक्रिया।

कोई जन्नत का तालिब है, कोई गमों से चूर है, अगर सजदा करवाती है इबादत कौन करता है। मिसेस तौकीर मीर प्रकाश से वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपने जो है हमें याद किया। और टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, जुड़ जाऊं तो फिर से मुझे तोड़ता है वो। हमने तो इश्क करके खुदा पा लिया, मगर जो बह हुनर संग से सर फोड़ता है वो, पढ़ता नहीं सही फाये दिल की वो दास्तां, हर रोज एक वर्क ही नुक्ता नरोड़ता है वो। एक शख्स मुझ में यूं है बसा हुआ, मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ता है वो, टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, जुड़ जाऊं जब तो फिर से मुझे तोड़ता है वो। अब वही महफिलें हैं बुझी बुझी, वही दिन है तो वही शाम है, वही दुश्मनी के हैं सिलसिले, वही दोस्तों को सलाम है, वही ख्वाब हैं जले हुए, वही लोग हैं धुले हुए, वही सारे हैं मंजर कशी, ना कोई खास है ना कोई आम है। वही बनावट से प्यार था, बता कहाँ चला गया कि मिले हैं जब भी, कहीं ना दुआ है ना सलाम है। तू था तो इस शहर से था अजीब सा एक वास्ता, अब तेरे शहर के लोगों से मुझे भला क्या काम है। दुनिया बदल गई तो क्या हम इस मोहब्बत के दर पे हैं, हमारे वास्ते तो आज भी वही खास है वही आम है। हम इतना तुमसे था पूछना कि वफा ने क्या बुरा किया, क्या यही सिला है प्यार का, क्या यही इसका इनाम है। वही महफिलें हैं बुझी बुझी, वही दिन है तो वही शाम है, वही दुश्मनी के हैं सिलसिले, वही दोस्तों को सलाम है।

समय जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, ये टॉपिक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. अगर कर पाते आपके आंसर्स टोटली डिफरेंट होते. हर शख्स अपनी जिंदगी का लेसन चेंज बताएगा, हर शख्स की अपनी राय होगी, अपना तजर्बा होगा, लेकिन ओवरऑल 75% लोगों का यही कहना होगा कि किसी पर हद से ज्यादा यकीन ना करो, वक्त सब बदल देता है. इसके बावजूद मुझे हैरानगी इस बात की होती है, आप ये सब जानते हैं, उसके बाद भी आपकी उम्मीदों का दारोमदार इंसानों के साथ क्यों जुड़ा होता है, जब आप जानते हैं कोई किसी का नहीं है. जब आप जानते हैं रब के सिवा कोई मुखलिस नहीं है, तो आप इंसानों से उम्मीदें क्यों लगाते हैं. गलती आपकी अपनी है ना, तो कोशिश करें आज से, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाइए. आप नोट कीजिए, आपके ना होने से किन लोगों को फर्क पड़ेगा. जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे. बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें जो आपने खुद पर सवार कर रखी है उन्हें अपनी लाइफ से आउट करें और अपनी तरफ से सब बेहतर करने की कोशिश करें. रिजल्ट रब्बे कायनात पे छोड़ दें. इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन, बल्कि बेहतर के बजाय बेहतरीन मिलेगा आपको. इस उम्मीद के साथ अपने आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत. अल्लाह हाफिज. हैव अ नाइस इवनिंग.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बरहनम बाजाबता तौर बरतानिया जो वजीर आजम बणजी वयो। बादशाह चार्ल्स एंडी बरहनम के हुकूमत ठाहिण जी दावत डिनी। एंडी बरहनम 10 डाउन स्ट्रीट पहुंची पंहिंजे हामिन सां मुलाकात कई ऐं खेनि ख़िताब कंदे चयो त तालीमी निज़ाम में तब्दीलियूं आणे नौजवान नसुल जी ख़िदमत कंदासीं।

अमरीकी हमलनि बावजूद टैकरी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान खे टैकरी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ूं मिली रहियूं आहिनि। मुल्की मफ़ादनि खे अॻियां रखी ॻाल्हियूं कंदासीं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि इस्कंदर मोमिनी ईरान सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवीअ जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

पाकिस्तान ऐं केनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, परॾेही वज़ीर इसहाक़ डार जी इस्लामाबाद में कैनेडियन हमनसब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार चयो त केनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी असांजे लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा बि मौजूदु आहिनि। कैनेडियन परॾेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़राअत, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा मौजूदु आहिनि।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस सी टी डी ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन टिनि ॾींहनि खां जारी ऑपरेशन में हेठि ताईं 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। डीपीओ बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई ठाक तबाह करे हथियार अधु कया विया आहिनि। बम्बाती बारकसई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमुन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो अमुन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण, घरू वज़ीर ज़ैल अंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविस अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि मंशियात फिरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि। सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणे में गढ़ी यासीन जे आबादगारनि जो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जी आफ़ीस ॿाहिरां धरणो। रोहिड़ी में काज़ीवाह जे पुछड़ी जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। भोटकी में ॾहर वाह जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जे आफ़ीस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। खैरपुर नाथन शाह में बि हारियुनि ऐं आबादगारनि के टी एन न्यूज़ आफ़ीस आॾो एहतजाज कयो। रखण में निम शाख जे आबादगारनि पाणीकोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सन में बि आबादगारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। आबादगारनि जो चवण हो त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबबि लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीकोट ख़िलाफ़ धरणो 3 ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवणु आहे त 3 ॾींहनि खां सख़्तु गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण लाइ आपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे अवाम खे तकलीफ़ ॾियणु नथा चाहियूं, पर पाणी ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

सिंध हाई कोर्ट सखर बेच डहरकी में अगवा जानल नारी फहमीदा पिताफिया के 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करण जो हुक्म दे छो। सरकारी वकील के माफी का आई जी सिंध घरू सेक्रेटरी जा जमानत जोगा वारंट वापस। अदालत औरत की बाजियाबी बाबत दरख्वास्त वापस वठण से भी सख्त कावड़ जो इजहार किया। पुलिस दबाव वेझी दरख्वास्त वापस नी कराए सके। अदालत जो डी आई जी नासिर आफ्ताब पठान के नारी 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करण जो हुक्म।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03015527724।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राबते जे लाए 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाएं ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खुज़िस्तान ताईं पखिड़िजी वियो। वाहा शहर, बंदर इमाम, तबरेज, बोशहर, हुर्मुज़गान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालिम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मारजण जी तस्दीक करे छॾी।

पाकिस्तान ऐं कैनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, परॾेही वज़ीर इसहाक डार जी इस्लामाबाद में कैनेडियन हमनसब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार चयो त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्युनिटी असांजे लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा बि मौजूद आहिनि। कैनेडियन परॾेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौरु वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे। ज़राअत, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूद आहिनि।

जुडिशियल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जज मुकरर करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे इजलास में इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट क़ाइमु करण जो बि फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि इजलास दौरान सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जजिस मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई।

शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे ऐं मुनमान जी सूरत हाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो अमनमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में शर्जील मेमण, घरू वज़ीर ज़िया लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह जो चवणो हो त ॾोहनि में मुलविस अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भते खोरनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ कयूं वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
1: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।

0: उहे कमज़ोर करे छॾींदो आहे ऐं उहे भुरभुरियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ दुनिया जी का बि पेन किलर उनखे यानी फ़र्क़ु न ॾींदी आहे उन सां अॻिते हली हुन जे अव्हां जी मर्दानगी ते असरु पइजी वेंदो आहे तव्हांजी जेको आहे सो ताक़त ख़तमु थी वेंदी आहे लेकिन इहे साइड इफेक्ट्स आहिनि कंहिंजी नज़र घटिजी वेंदी आहे कंहिंजो को मसइलो थी वेंदो आहे लेकिन हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहो आहे त जल्दी असांखे फ़ाइदो पए पोइ चाहे इंजेक्शन मां पए चाहे ड्रिप मां पए चाहे हज़ारे रुपया ख़र्च करण सां पए पर जल्दी पए ऐं आरज़ी छो न उहो आरज़ी फ़ाइदो हुजे पर हिते जेकॾहिं असां मुकमल कंहिंखे कुझु टाइम ॾींदा आहियूं त हिते कुझु टाइम दवा माण्हू खाइण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि पर जेके पेशंट्स असां वटि अची चुका आहिनि ऐं कुझु टाइम जेको हुननि असांजे चवण ते दवाऊं खाधियूं आहिनि त उहे अहिड़े जेके मूज़ी अमराज़ आहिनि उन्हनि मां अलहमदिल्ला उन्हनि खे छुटकारो मिली चुको आहे जंहिंजा व्यूज़ उहे ख़ुदि FM रेडियो ते लाइव बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं असां वटि क्लिनिक ते अची बि जेको आहे सो लाइव रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि जंहिंमां कुझु व्यूज़ आहिनि जेके अॼु बि अव्हां ताईं ॿुधाईंदासीं लेकिन पहिरियां हिन बीमारी जे बारे में अव्हां ताईं इहा आगाही पहुतासीं त अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बीमारी आहे उन जे करे जेको आहे सो तव्हांखे निंड बि न अची सघे थी तव्हांजी जेको आहे सो बेचैनी थी सघे थी तव्हां डिप्रेशन जा पेशंट थी सघो था तव्हां रत जी कमी में अची सघो था तव्हां कमज़ोरी में अची सघो था तव्हां खोड़ सारी बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे इन जे करे इन जो होम्योपैथिक में तमामु कामयाबु इलाजु आहे ऐं इन खां रोकथाम जे लाइ अव्हांखे जल्द अज़ जल्द जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी अव्हांखे शिकायत थिए थी जेके तव्हांखे ॿुधाई आहे त तमामु क़रीबी कंहिं सुठे गैस्ट्रोलॉजिस्ट वटि या होम्योपैथिक के सुठे फिज़िशियन खे ज़रूरु ॾेखारियो इन जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं थींदियूं आहिनि एच पैलोरी हिकिड़ी ब्लड टेस्ट थींदी आहे लेकिन आउं सजेस्ट कंदो आहियां एच पैलोरी स्टूल जी टेस्ट जेकी हूंदी आहे पाखाने जी जेकी टेस्ट हूंदी आहे उन में एंटीजन मौजूदु हूंदो आहे ऐं उहो जरासीम नज़र अची वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ खोड़ सारियूं ॿियूं बि टेस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो यानी जंहिं हिकिड़े क़िस्म जी अव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायूं त कैमीरा यानी उनजी टेस्ट जहिड़ी थींदी आहे त कैमीरा आंडर में वेंदी आहे ऐं उनजी पोइ मुकमल उन में ख़बर पवंदी आहे त उन में बि जेको आहे सो इहो जरासीम मौजूदु आहे या नाहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इन जे करे लेकिन एतिरनि वॾनि टेस्टनि खां बचण जे लाइ बहितरु इहो आहे त की तव्हां सुठे डॉक्टर खे ॾेखारींदव त उन में अव्हांजो वक़्तु बि बचंदो अव्हांजो पैसो बि बचंदो ऐं अव्हांखे जेको आहे सो जल्दी शिफ़ा बि थी वेंदी अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे यानी मां जेकी बीमार टेस्ट जी ॻाल्हि बि कई त यानी घणा तव्हां एंडोस्कोपी ज़रूरु ॿुधो हूंदो हिनखे एंडोस्कोपी चइबो आहे जेको आहे सो टेस्ट कई वेंदी आहे लेकिन इन्हनि टेस्टुनि खां इन टाइमिंग ख़राबु थियण खां बचण जे लाइ बहितरु इहो आहे तव्हां असां वटि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कॾहिं बि अचो अहिड़े क़िस्म जी का बि तकलीफ़ आहे त अलहमदिल्ला हुन में बिल्कुलु शिफ़ायाबी थींदी इन में पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखंदा कयो कोशिशि कंदा कयो त छो जो बीमारी किथां ॿाहिरां कोन ईंदी आहे पंहिंजे पेट जे रस्ते वात जे रस्ते वेंदी आहे जॾहिं तव्हां अहिड़ी का शयूं इस्तेमालु कंदो त तव्हांखे इहा तकलीफ़ वधी सघे थी इन जे करे ॻाढ़ो मिर्च असांजो दुश्मन आहे ॻाढ़ो मिर्च तमामु घटि में घटि इस्तेमालु कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां मानी तव्हां पंहिंजे टाइम ते ज़रूरु खाईंदा कयो यानी जेको टाइम आहे राति जो तक़रीबन मां इहो ई सजेस्ट कंदुसि त 8 बजे अव्हांखे 7 बजे 8 बजे तव्हांजे राति खे राति जी मानी खाइणु खपे त जीअं सुम्हण जे टाइम खे थोरो वक़फ़ो मिली सघे ऐं तव्हां थोरो मानी हज़म थी सघे अहिड़े तरीक़े सां खाधे पीते खां पाणी जेको आहे सो ज़रूरु अॻे थोरो पियो रखो खाई पी मानी ऐं जल्दी पाणी पीअण बि जेको आहे सो मादे खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तरियल शइ नुक़सानदेह आहे खटी शइ नुक़सानदेह आहे सुठो फ्रूट जेको आहे सो इस्तेमालु कयो अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसण जी आदत विझो सौंफ़ तमामु हिकिड़ो मादे खे जेको आहे सो साफ़ु रखे थो ऐं ख़ुशबूदार रखे थो ऐं तकलीफ़ुनि खां जेको आहे सो बचे जो पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़्यादा कयो चांहि जो इस्तेमालु बंदि कयो खीर जो इस्तेमालु अव्हां पंहिंजे मामूल में आणियो इनशाला तव्हां अव्हां बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदो ऐं सिहतयाब थी वेंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो जेके बि इहे असां वटि जेके ॿाहिरियूं शयूं जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो बर्गर वग़ैरह या मुर्गन गिज़ाऊं इहे तमामु हानिकार आहिनि ऐं नुक़सानकार आहिनि इन्हनि खां तव्हां काफ़ी बची सघो था ऐं जेको अॼुकल्ह जो दौरु आहे डिप्रेशन जो दौरु आहे ऐं अव्हां जेको आहे सो घणा घरनि में वेही करे घणी मोबाइल इस्तेमालु कंदा इन खां बहितरु इहो ई आहे त अव्हां ॿाहिरि जेको आहे सो स्पोर्ट्स में जेको आहे सो हिसो वठो कुझु रांदियुनि में कुझु वॉक में त इन सां बि जेको आहे सो तबियत ते तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदो पए थो, तव्हां डिप्रेशन खां बची सघो था, बेकार ॻाल्हियुनि खां बची सघो था, बेकार ख़्यालातनि खां बची सघो था, सुठा ख़्यालात हूंदा ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़री सघे थी, तव्हां होर सारी बीमारियुनि खां जेको आहे सो बची सघो था। जी सर,
1: तमामु बहितरीन दोस्त, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां लाइव अवांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। वज़रीअ लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। 0301-91-851 एहसन साहब खे चवंदासीं त उहो बि कुझु बीमारियुनि बाबति ॿुधाइनि असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे, जेके दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हफ़्ते जा 6 ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनखे बग़ैर ऑपरेशन जी कामयाबु इलाज कयो वञे थो। नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, पाइल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। 0301-91-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि।
2: जीअं त असां माहिर अमराज़ कुझु बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, जीअं गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूर, कुन रग जो सूर, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूर, अधु मथे जो सूर ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाले जे खंघु, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि में न वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
1: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-91-851 प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। अक्सर करे मरीज़ लाइलाज थी करे वॾनि वॾनि इस्पतालुनि मां, वॾनि वॾनि शहरनि मां वापसि थी करे वरी बि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां हर इलाज मौजूदु आहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे, डॉक्टर साहिबु इलाज कंदो आहे ऐं यकीन अलाह ताला जे हुकुम सां ई रिज़ल्ट मिलंदो आहे, माण्हुनि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। जॾहिं शिफ़ा मिले थी तॾहिं इंसान जी पंहिंजी दिलि हिकिड़ी मुतमैन हूंदी आहे। त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़। हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खिते में छिकताण घटाने लाए आलमी सतह ते सिफारिशू कोशिश जारी। चाकड़ी कंदड़ मुल्कन अबूरी मुआदे की बहाली लाए 10 डीह जंग बंदी की तजवीज डेई छी। ईरानी अहदेदार पारा भी 10 डीह की जंग बंदी वाली तजवीज मिलने की तस्दीक। आलमी इदारे राइटर्स मूजिब 10 डीह जंग बंदी जो मकसद अबूरी मुआदे के बीहर बहाल करने का दग गोलना है।

0: ऐं ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाए ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोज़िस्तान ते पखिड़िजी वियो। माशहर, बंदर अमाम, तबरेज़, बोशहर, हरमुस्कान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां दुर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम, MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मार्जनि जी तस्दीक करे छॾी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

कतलेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

हुकूमत तेल जा नवां अघ मुकरर करण वारे तरीक़ेकार जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं हाणे रोज़ाने जी बुनियाद ते मुक़रर कयूं वेंदियूं। ओगरा रोज़ानो नयूं एक्स क़ीमतूं पंहिंजे वेबसाइट ते जारी कंदी। पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं आलमी मार्केट जे गुज़िरियल 7 ॾींहनि जे सरासरी अघनि सां ॻंढियल हूंदियूं। छंछर ऐं आचर ते पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में का बि तब्दीली न कई वेंदी। ओगरा खे रोज़ाने जी बुनियाद ते क़ीमतुनि जे ऐलान लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत जी मंज़ूरीअ जी ज़रूरत न पवंदी। ईरान ऐं अमरीका विच में छिकताण घटाइण लाइ आलमी सतह ते सफ़ारती कोशिशूं जारी। ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि अबूरी मुआदे जी बहाली लाइ 10 ॾींहं जंग बंदीअ जी तजवीज़ ॾेई छॾी। ईरानी उहिदेदार पारां बि 10 ॾींहनि जी जंग बंदी वारी तजवीज़ मिलण जी तस्दीक। आलमी ख़बरू इदारे रॉयटर्स मूजिब 10 ॾींहं जंग बंदीअ जो मक़सदु अबूरी मुआदे खे ॿीहर बहाल करण जा दग ॻोल्हणु आहे। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी हमलनि बावजूद ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफ़ारती राब्ता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जे दावत ते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल लासिम मुनीर घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाए ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोज़िस्तान ताईं पखिड़िजी वियो। माशहर, बंदर इमाम, तबरेज़, बोशहर, हमज़कान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मार्जन जी बि तस्दीक करे छॾी।

पाकिस्तान ऐं कैनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल कैनेडियन परडे॒ही वज़ीर जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ातूं। कैनेडा मां कैनोला जी पाकिस्तान दरामद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कैनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़राअत जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। कैनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवणु हो त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूदु आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान कैनेडा सां लाॻापन खे सभिनी शोबनि में हथी ॾियणु चाहे थो। कैनेडियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौरु वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460100।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94
2: शेख आयाज़ जी सिस्टम से क्या तो फरमाइश वसार कोशिश कभी तो पूरी कर दूँ।

ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमनी अहम दौरे ते इस्लामाबाद पहुंची वयो। ज़रियन मूजिब इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो खास पैगाम खणी पहुतो आए। मोहसन नकवी की दावत ते बिन डीहन ला इस्लामाबाद पहुंतल ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसन नकवी ए बेन सा मुलाकात कंदो।

ईरान ऐं अमरीका विच में छिकताण घटाइण लाइ आलमी सतह ते सिफारती कोशिशूं जारी। ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि अबूरी मुआहिदे जी बहालीअ लाइ 10 ॾींहं जंग बंदीअ जी तजवीज़ ॾेई छॾी। ईरानी उहिदेदार पारां बि 10 ॾींहनि जी जंग बंदी वारी तजवीज़ मिलण जी तस्दीक। आलमी खाबरू इदारे राइटर्स मूजिब 10 ॾींहं जंग बंदीअ जो मक़सदु अबूरी मुआहिदे खे ॿीहर बहाल करण जा दॻ ॻोल्हणु आहे। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण हो त अमरीकी हमलनि बावजूदि ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जी बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं।

ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाहे ॾींहं बि शदीद हमला अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सेस्तान बलोचिस्तान ऐं कोज़िस्तान ते पखिड़िजी वियो माशर बंदर इमाम तबरेज़ बोशहर हुर्मुज़गान जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया ईरान पारां बि उर्दन जे अक़बा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा कुवैत जे अली अल सालम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मारजण जी बि तस्दीक करे छॾी

यमन जे होसी बागन सऊदी अरब जी नाकाबंदी जो ऐलान करे छो। होसी बागन जे तर्जमान इंसार उल जो चवण आहे त सऊदी अरब सनआ एयरपोर्ट ते हमलो कयो, जवाब में असां बि बहरी नाकाबंदी कई आहे, अख जे बदले अख वारे असूल ते कायम आहियूं। होसी बागन जी नाकाबंदीअ खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वधी वई। पाकिस्तान ऐं केनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल केनेडियन परडे॒ही वज़ीर जूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। केनेडा मां किनोला जी पाकिस्तान दरआमद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं केनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़राअत जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। केनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण हो त केनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूद आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान केनेडा सां लाॻापन खे सभिनी शोबनि में अर्थी ॾियणु चाहे थो। केनेडियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़राअत, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूद आहिनि। बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस, CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिन ॾींहनि दौरान 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया, 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। बम्बाती बारकसई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे।

जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध इस्लामाबाद ऐं पेशावर हाई कोर्ट्स में जजिस जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया आफरीदीअ जी सदारत हेठि इजलास दौरान जजिस जी मुक़ररी ऐं मुस्तक़िलीअ ते ग़ौर वीचार कयो वियो। बदिलाई मूजिबि सिंध हाई कोर्ट बाबति 5 एडिशनल जजिस जी मुक़ररी ते ग़ौर कंदे 3 जी मंज़ूरी ॾिनी वई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेश कुमार, एडवोकेट शाहनवाज मेमण ऐं एडवोकेट मोहम्मद हुमायूं ख़ान शामिल। एडिशनल जज ख़ालिद शाहानी जे मुदे में 6 महीननि जी वाद। एडिशनल जज सैयद फयाज़ुल हसन शाह मुस्तक़िल न थी सघियो। इजलास दौरान सिंध हाई कोर्ट आइनी बैचिस जे मुदे में 3 महीननि जी वाद कई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाह रुख अंजमन, एडवोकेट अयाज शौकत ऐं उमेर मजीद खे एडिशनल जजिस बणाइण जी मंज़ूरी। पेशावर हाई कोर्ट जे 4 एडिशनल जजिस खे मुस्तक़िल करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे।

हुकूमत तेल जा नवा अघ मुकरर करण वाले तरीकेकार जी मंजूरी ॾेई छॾी। पेट्रोल ऐं डीजल जूं क़ीमतूं हाणे रोज़ानी बुनियाद ते मुकरर कयूं वेंदियूं। ओगरा रोज़ानो नयूं एक्स डिपो क़ीमतूं पंहिंजी वेबसाइट ते जारी कंदी। पेट्रोल ऐं डीजल जूं क़ीमतूं आलमी मार्केट जे गुज़िरियल 7 ॾींहनि जी सरासरी अघनि सां ॻंढियल हूंदियूं। छंछर ऐं आचर ते पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में का बि तब्दीली न कई वेंदी। ओगरा खे रोज़ाने क़ीमतुनि जे ऐलान लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत जी मंज़ूरीअ जी ज़रूरत न हूंदी। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण, घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविस अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भते खोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि।

0: सिंध मां 20 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल ॿारनि मां हिकु बि बाज़ियाब न थियो। बुबलो बाईपास वटि कैंप हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि पारां 4 ॾींहं हिकु ई वक़्तु 5 शहरनि में धरणनि जो ऐलान। एक्शन कमेटी जे अॻवाननि मूजिबि 4 ॾींहं बुबलो वटि क़ौमी शाहराह, हैदराबाद में वाधूवा ऐं कराचीअ में 3 तलवार वटि धरणा हया वेंदा। साॻे ॾींहुं उॿाड़ो में कमू शहीद ऐं कश्मीर में डेरा मोड़ वटि बि धरणा लॻंदा। पुलिस जी वरतल मोहलत ख़तम थी वई पर पुलिस अमलदारनि हिकु बि ॿार बाज़ियाब न करायो। सेठारजा मां मुबैना तौर 5 महीना अॻु अगवा ॼाणियल शागिर्दियाणी आसफा मुगल केपीअ मां हथ वारसनि पारां मुसलसल एहतजाज ऐं बबलो धरणे में शिरकत खां पोइ पुलिस नेठि जाॻी पई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ईरान जो परदेही वज़ीर इस्कंदर मोमिनी आला सतही वफद से गड अहम दौरे ते इस्लामाबाद पहुंची वो वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी ए तलाल चौधरी पारा ईरानी हमनसब की आछियां घरू वजीर मोहसन नकवी ईरानी हमनसब से गालबोल कंदे चयो तो पाकिस्तान अचण ते अवां के खुशामदीद चवां थो उम्मीद है तो ईरानी घरू वजीर सुठी खबर से गड आयो है अवां जे दौरे पाकिस्तान सभी तरफन जा लागाप मजबूत थींदा इलाकाई सूरत हाल ते भी अगभराई की उम्मीद है। ईरान ए अमेरिका विच में छिकताण घटाने लाए आलमी सतह से सफारती कोशिशों जारी टेकड़ी कंदर मुल्क अबूरी मुआदे की बहाली लाए 10 डी जंगबंदी की तजवीज़ दे छी ईरानी अहदेदार पारा भी 10 डी की जंगबंदी वाली तजवीज़ मिलने की दस्ती आलमी खबरू इदारे रॉयटर्स मूजिब 10 डी जंगबंदी जो मकसद अबूरी मुआदे के बीहर बहाल कर दग खोलना है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई चो तो अमरीकी हमलन बावजूद टेकड़ी कंदड़न जरिए बिन्हीं मुल्क विच में सफारती राबता जारी ईरान के ट्रैकड़ी कंदड़न जरिए पैगाम ए तजवीजू मिली रही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।